0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर

परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, सुबह के ठीक 6 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।

नमस्कार आदाब। आज राष्ट्रीय सभा के कार्य जारी रखे जाएंगे। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के गैर हाजिरी में अगया नवमाही अंतरिम प्रधानमंत्री की हैसियत से प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान जवाब देंगी। सन 2014 से 2024 तक के मुशरस द्वारा बेचे या खरीदे गए हवाई जहाज़ों पर सवाल किए जाएंगे। एमरशस के पूर्व श्रमिक संघ सदस्य राज रामलगन ने याद दिलाया कि राष्ट्रीय विमानन कंपनी जब इन वॉलंटरी शासन के तहत थी तब विमानों की संख्या 15 से 9 तक घटाई गई थी। कम दामों में जहाज़ों को बेचा गया था जबकि रिपोर्ट में उच्च दामों का जिक्र किया गया। इनसे बड़े नुकसान हुए। राज रामलगन क्रोल जाँच के बारे में भी पूछ रहे हैं। मुशरस में पर्यावरण को लेकर एक बड़ा कदम तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में नए एनवायरनमेंट रेगुलेशंस 2026 को लागू करने पर मंजूरी जताई गई। इस ढांचे के जरिए हवा की किस्म और कारखानों तथा इंसिनरेटरों से प्रदूषित उत्सर्जन पर काबू रखा जा सकेगा। कैथरबोन में बढ़ते ट्रैफिक जाम के चलते अधिक

0: कार्य हल ढूंढने के लिए एक मास्टर प्लान पर काम करने का इरादा रखते हैं। अगर बहुतों के लिए मेट्रो एक तेज जरिया और कारगर परिवहन है, लेकिन कास्कबोन के बाशिंदों के लिए शहर में ही आने जाने के लिए ये प्रणाली मसला पैदा करती है। विदेश में ग्रेट ब्रिटेन में गृह सचिव शबाना महमूद कई कैबिनेट मंत्रियों में शामिल हैं जो सर के एस थॉमस से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार के उच्च अधिकारियों में तनाव पैदा हो गए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल, आम हालत, कुछ बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दोपहर बाद बादल घेराएंगे और रह रह कर बारिश होगी, खासतौर पर पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू में। कुछ जगहों में कोहरा छाया रहेगा। आज रात घने बादल होंगे, ऊंचाइयों पर हल्की बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण वाले लगूनों में, इसी वजह से दूर समुद्र में ना जाने की सलाह है। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 23 से 25, साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सुबह 6:30 बजे सूरज उगेगा और शाम को 5:42 पर सूरज ढल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: RM3 Radio.

0: मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबरा खैर प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। उम्मीद करते हैं बफजल खुदा आप खैर वाफियत से होंगे। सामीन, आज की मजलिस ख़ास सफ़र मदीना से मुंसलिक होगी। मौलाना शाकिर अली नूरी की ज़बानी शहर मदीना उनवान पर बयान का पहला हिस्सा आपको हम गोश गुजार करेंगे और उसका दूसरा और आखिरी हिस्सा अगले हफ्ते इंशाअल्लाह। आइए बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान करीम से करते हैं। बागौर अदब समात करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: कबीर।
1: सदक अल्लाह अज़ीम। सफ़र मदीना, दुनिया का अजीम सफ़र, कायनात की अजीम मंजिल, जिसकी ख्वाहिशमंद हर बंदे मोमिन सुबह व शाम करता है।

0: शहर मदीना एक ऐसा शहर जिसकी रहनाइयों जिसकी तजल्लियों का दीदार हर एक चाहता है। इसी उन्वान पर मौलाना शाकिर अली नूरी की ज़बानी ये तकरीर समाप्त करें। आज आप इसका पहला हिस्सा समाप्त कर रहे हैं।
1: आप मदीने मुनव्वरा के हवाले ही से बहुत सारी बातें समाप्त फरमा चुके हैं। दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं होगा जिस शहर के लिए इंसान इतना तड़पता हो जितना मदीने के लिए तड़पता है। आप अंदाजा लगाइए एक ऐसे शहर के अंदर जाने की तड़प, बल्कि उस शहर में सिर्फ जाने ही की तड़प नहीं होती बल्कि एक बंदे मोमिन की

तमन्ना भी ये होती है कि उस शहर में पहुंचकर उसके जिस्म से रूह परवाज कर जाए। आम तौर पर इंसान जीने का ख्वाहिशमंद होता है, लेकिन मदीना ऐसा शहर है कि आदमी चाहता है कि उधर मौत वाकई हो जाए तो उससे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं हो सकता। आम तौर पर कब्रिस्तान को देखने के बाद आदमी की कैफियत जुदा हो जाती है और आदमी सोचता है कि ये दारुल इबरत है, ये इबरत की जा है, और उसकी बड़ी अजीब कैफियत बन जाती है, कुछ घबराहट सी पैदा होती है, कुछ तशवीश सी पैदा हो जाती है। लेकिन जन्नतुल बकी को देख करके आदमी उसमें दफन होने की तमन्ना करता है। आप अंदाजा लगाइए रब्बे कदीर जल्ल जलालहू का ये कितना बड़ा इनाम और उस शहर और उस कब्रस्तान की कितनी बड़ी अजमत है। और क्यों ना हो कि वहां जाने का हुक्म और वहां पहुंचकर तौब इस्तगफार का हुक्म खुद रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपने कलाम के अंदर फरमाया है। रब्बे कदीर कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अन्फुसहुम, और अगर वो अपनी जानों पर जुल्म करें। जुल्म किसे कहते हैं? वदउ शय अला गैर महल्लिही, जो चीज जिस काम के लिए बनाई गई हो उसके बराक्स अगर कोई काम किया जाए तो उसको कहते हैं जुल्म। अल्लाह ने मुसलमानों को क्यों पैदा फरमाया और खैर उम्मत का ताज मुसलमानों को क्यों अता फरमाया? सिर्फ नेकी करने के लिए नहीं बल्कि नेकी का हुक्म देने के लिए उसे खैर उम्मत का ताज अता फरमाया गया, और बुराई से बचने के लिए ही नहीं बल्कि बुराई से रोकने के लिए खैर उम्मत का ताज उसे अता फरमाया गया। अब एक बंदे मोमिन जिस काम के लिए पैदा किया गया है और जिस काम की वजह से उसे मनसब अता किया गया है, अगर वो उस काम को अंजाम नहीं दे रहा तो गोया वो जुल्म कर रहा है, और जब जुल्म कर चुका हाथ अल्लाह तबजल्ला ने कुरान मुकद्दस छूने के लिए अता फरमाए, हाथ का इस्तेमाल उसने गलत काम में किया, पैर को रब्बे कदीर ने नेकी के लिए उठाने के लिए हुक्म दिया, गलत कामों में इस्तेमाल किया, उसने जुल्म किया। और यह बात जहन में रहे कि जब जब इंसान अपने वजूद पर जुल्म करेगा उस इंसान की तबीयत के अंदर बेचैनी पैदा होगी, बेकरारी पैदा होगी, और जब बेचैनी और बेकरारी पैदा होगी तो इंसान मारा मारा फिरेगा। तो मेरा रब नहीं चाहता कि उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती मारे मारे फिरे, इसलिए फरमाया कि अगर उनकी जानों पर वो जुल्म कर बैठे तो कहीं मारे मारे फिरने की जरूरत नहीं, महबूब आपके पास आ जाए, आपके दर पर आ जाए और आकर क्या करें? मुझसे माफी मांगे। महबूब तुझे कबूल करना है तो कहीं भी तू माफी कबूल कर सकता है, दर मुस्तफा पर आने का हुक्म क्यों दे रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने का हुक्म क्यों दे रहा है? तो निदा आएगी कि मेरे बंदो, जब महबूब के सदके में कुरान दिया हूं तो महबूब के सदके में माफी भी मिल जाएगी, इसलिए आ जाओ इनके दर पर आ जाओ और यहां आकर अल्लाह से माफी चाहो। और फिर उस बंदे मोमिन के कल्ब जिगर पर यह बात भी रहे कि मैंने माफी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाया है। तो एक आशिक जो होता है वो जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा इस्तगफार कर ले तो फिर कभी वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी जिंदगी फिर गुनाहों के धब्बों से आलूदा हो जाए, दागदार हो जाए। लेकिन फिर उस बंदे को बाबर किया जा रहा है, बंदे खबरदार, ये ना समझ लेना कि तू यहां आकर के हाथ उठाकर दुआ कर लिया और तौबा इस्तगफार तूने कर ली तो मैं तेरी तौबा भी कबूल कर लूंगा, तेरी बख्शिश भी कर दूंगा, तेरे गुनाहों को माफ भी कर दूंगा। फरमाया गया, नहीं मेरे बंदे, मैं सब कुछ देता हूं लबे मुस्तफा के सदके में देता हूं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जो कुछ दूंगा मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में दूंगा। इसलिए अगर तुम माफी भी चाहते हो तो तुमने तो तुम्हारा काम कर लिया, तुमने तुम्हारा काम तो कर लिया, मुझसे माफी तो तुमने मांग ली, और महबूब

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गौरबार में हाजिर होकर तुमने माफी मांगी है। लेकिन मेरे बंदो, ये भी सुन लो, इस हुक्म पर अमल करके छुट्टी नहीं हो जाएगी जब तक कि मेरे महबूब

0: बारिश की दुआ कर दी तो सुनो तुम मुझे पालोगे। क्या फरमाया? ऐसा नहीं फरमाया कि पालोगे, बल्कि ताकीद आई लवजदुल्लाह लवजदुल्लाह, जरूर जरूर तुम अल्लाह को पालोगे। हम अल्लाह को पाते हैं, कभी कहार की हैसियत से पाते हैं, कभी जब्बार की हैसियत से पाते हैं, कभी गैज़ो गज़ब में पाते हैं, लेकिन दरे मुस्तफा पर अगर तुमने तौबा की है तो अब वहां तुम मेरे महबूब के दरबार में तौबा इस्तगफार तुमने कर ली, महबूब ने भी तुम्हारी बख्शिश की दुआ कर दी तो मुझे पाओगे, लेकिन शान कहारी के साथ नहीं पाओगे, तौबा कबूल करने वाला पाओगे और मेहरबानी करने वाला पाओगे। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में अल्लाह अज़्ज़वजल से जो माफी मांगता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी बख्शिश की दुआ अगर फरमाते हैं तो बंदा जरूर अल्लाह को पा लेता है, और इस शान से पाता है कि अल्लाह उसकी तौबा कबूल भी फरमा लेता है और महबूब के लबों के सदके में रहमतों की बारिश भी फरमा देता है। भाई तौबा मांग, तौबा की थी ना, उसे रहमो करम कहां मांगा था, उसने तो तौबा की थी, सिर्फ तौबा का कबूल करने वाला रब को पा लेता। लेकिन यहां फरमाया जा रहा है लवजदुल्लाह तवाबर रहीमा, के बंदे तुम तौबा कबूल करने वाला अल्लाह को पाओगे और मेहरबानी करने वाला, ये रहीम इसके लिए फरमाया गया ताकि महबूब न हिलाए, तो उनके सदके में कुछ मिलना भी तो चाहिए, तो तौबा भी कबूल हो जाएगी और महबूब के सदके में रहमत इनाम तो तुम्हें नवाज दिया भी जाएगा। जब ये आये करीमा देहात में रहने वाले एक बुजुर्ग के पास इस आयत करीमा के बारे में बताया गया कि ये आयत करीमा हुजूर रहमत आलम अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में जो भी हाजिर होकर अल्लाह से माफी मांगे और हुजूर भी उसकी सिफारिश फरमा दे तो रब्बे कदीर जल्ला जलाल उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। तो अब वो बुजुर्ग वहीं से आवाज देते हैं, जलम तो नफसी, जलम तो नफसी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, जलम तो नफसी, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, मैंने गुनाह किए हैं, मेरे आका में हाजिर हूं, मेरे आका में हाजिर हूं। ये कहते हुए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की गरज से मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए। लेकिन जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो सहाबा किराम अलैहि रिदवान से रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब उन्होंने दरियाफ्त किया तो बताया गया कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावे मुफारकत दे गए हैं और इस दुनिया से जाहिरी तौर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके हैं। तो बड़ी तशवीश हुई उन्हें, उन्हें रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की जियारत कराई गई। बस वो कब्र अनवर को देखे और बेकाबू हो गए और कब्र अनवर से लिपट गए, और लिपट करके उन्होंने जो अशआर कहे हैं आज भी वो अशआर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों से लग करके जो सुतून है उन सुतूनों पर आज भी वो अशआर लिखे हुए हैं। उन्होंने बरजस्ता कहा या खैर मन दुफिनत बिलकाई आजमहु फताब मिन तैबिहिनल काउ वल अकमु نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم। یا شعر وہ پڑھتے رہے اور یہی عرض کرتے رہے کہ میں گنہگار ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، حضور آپ ہی بخشش کی دعا فرما دیں۔ بس اب وہ اشعار کہہ رہے تھے اور معافی مانگ رہے تھے، قبر انور سے آواز آتی ہے غفرانک غفرانک غفرانک، یا اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ इसीलिए आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है।
1: शहर मदीना का दूसरा और आखिरी हिस्सा इंशाल्लाह अगले हफ्ते सामीन इसी वक्त हम आपको गोश गुजार करेंगे। सामीन मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में जिसकी हाजिरी हो गोया अल्लाह ताला का उस पर खास फजल करम है। छोटा हो या बड़ा, जवान हो या बूढ़ा, कमज़ोर हो या ताकतवर, अमीर हो या गरीब, इस दरबार में बिला तफरीक हर एक की हाज़िरी कबूल होती है। इन दिनों कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से हुज्जाज कराम इस पाक ज़मीन के सफ़र की तैयारी में लगे हुए हैं और लबों पर बस यही जुम्बिश है।

परगाहे रिसालते माब वो दरबार है जहां झोली फैलाने से पहले ही भर जाती है और इरादा करने की देर होती है कि वो पाए तकमील को पहुंच जाता है। ये शहर मदीना है।

एक ऐसी जगह है जहां खामोशी भी सुनी जाती है, खामोश रहकर भी मांगने से दुआएं कबूल मंजूर होती हैं, क्योंकि आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आशिकों के दिल की धड़कनों को भी महसूस कर लेते हैं, इसीलिए कहते हैं।

शक्ति। मंगलवार 12 मई घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:45 हो रहे हैं। भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम को लेकर रेडियो मनोरंजन पर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। सुमिता की ओर से सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें, आप सभी का अभिवादन है, आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात आप सभी को, आशा करते हैं आप सभी के जीवन में ईश्वर की अपार कृपा है और ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलिए हम चलने का प्रयास करते हैं। और मन में यही प्रार्थना हम करेंगे कि जीवन के किसी भी पड़ाव में हम क्यों ना हो, ईश्वर जो है सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहे, क्योंकि उनके मार्गदर्शन के बिना जीवन में आगे बढ़ना कहीं ना कहीं संभव नहीं होता है। और ईश्वर का आशीर्वाद जिसके जीवन में होता है उस व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो चलिए इन्हीं सभी विचारों के साथ आज के कार्यक्रम को आरंभ करने हम जा रहे हैं। दिन के 11:30 बजे तक का चलने वाला है भक्ति गीतों का यह कार्यक्रम। तो चलिए इस अगले भक्ति गीत द्वारा भगवान गणेश का नाम लेते हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।

चलिए यहाँ पर ईश्वर की आराधना में आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत आभार। हर एक भक्त जो है अपने प्रकार से अपनी भक्ति को अपने इष्ट के प्रति दर्शाता है और हमारे ईश्वर जो होते हैं हमारे सभी भक्तों की भक्ति को स्वीकार करते हैं क्योंकि सच्चे हृदय से सच्चे मन से की गई प्रार्थना ईश्वर सदैव स्वीकार करते हैं। हाँ कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम ईश्वर से कुछ चाहते हैं हमें वो मिलता नहीं है तब हम निराश हो जाते हैं एक बच्चे के समान अपने ईश्वर से नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, ईश्वर हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है जिससे हमारा भला होता है। तो इसलिए ईश्वर जो भी करते हैं कहते हैं हमारी भलाई के लिए ही तो होता है।

श्रोताओं, दिन के 11:01 हो चुके हैं। RM3 रेडियो मनोरंजन पर भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम में आप हमारा साथ दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपना मन सिर्फ मुझ में लगाता है और मैं ही उसके विचारों में रहता हूँ, जो मुझे प्रेम और समर्पण के साथ बचते हैं और मुझ पर पूरा विश्वास रखते हैं, वो उत्तम श्रेणी के होते हैं। क्योंकि जब हमारे मन में ईश्वर बसे होते हैं, जब हमारे हर एक विचार में ईश्वर होते हैं, तो हमारे विचारों में कभी नकारात्मकता नहीं आ सकती है। तब सदैव हम सिर्फ सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं अपने जीवन के प्रति और जीवन को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। तब हमारे विचार भी पवित्र होते हैं, तब हमारे विचार भी सकारात्मक होते हैं, और जब विचार सकारात्मक होते हैं तो हर एक कर्म भी अपने आप में सकारात्मक होता है। तो इसलिए बस ईश्वर को सदैव अपने मन में बसाए रखें और फिर ईश्वर ही जो है हमारा मार्गदर्शन करेंगे। शुद्ध

कहते हैं भक्तों का भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम भाव ही हमारे ईश्वर की भक्ति का स्वरूप होता है। जो अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित कर देता है वह ऐसे व्यक्ति की, ऐसे भक्त की स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। और हर एक भक्त जो है अपने ईश्वर की शरण में जाना चाहता है, अपने ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहता है। और कहते हैं ना कि हमें ईश्वर को तभी ही उनका ध्यान नहीं करना चाहिए या उनका स्मरण नहीं करना चाहिए जब हम दुख में हो, परेशानी में हो, किसी कठिनाई में हो। ईश्वर का नाम तो सतत हमारे श्वास पर होना चाहिए, हर एक श्वास पर ईश्वर का नाम होना चाहिए।

0: शक्ति।
1: और श्रोता इसी के साथ जो है हम भक्ति में शक्ति की इस अंतिम प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। हनुमान जी के नाम से कार्यक्रम का समापन करते हैं। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की अपार कृपा आप पर सदा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हमें दीजिए अनुमति और आपको बता दें कि 11:30 बजे आप सुन पाएंगे चाइनीज़ भाषा में कार्यक्रम जिन की प्रस्तुति में हमारी आपकी भेंट जल्द होगी। तब तक के लिए हमारी ओर से नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को। ऐसे ही रेडियो मनोरंजन पर हमारा साथ देते रहिए आप।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं। सुनते हैं समाचार, सुमैरा अकबर।

0: West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं। सुनते हैं समाचार सुमैरा अकबर।

0: सुहाना सफर।
1: 12:11 हो चुके हैं दोस्तों। अरे कैसे हैं आप सब, मैं हूँ आपके साथ पूनम और बाहर का मौसम क्या बात है यार। दिल का मूड हो, अच्छे गाने हमेशा बहुत ही काम कर जाते हैं। और मुझे पता है कि आज मौसम इतना अच्छा है तो साथ में आप लोगों का भी दिल कर रहा होगा कुछ अलग से गाने सुनने का, क्योंकि मौसम जो होता है ना वो दिल को भी सुहाना सुहाना कर देता है। तो अगले 3 घंटे जो है बस थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, मेरे साथ चलते रहिए इस सुहाना सफ़र में। तो ये सुहाना सफ़र आपके लिए लेकर आया, आपको अगर कोई मैसेज करना है, किसी के लिए भी कोई दिल की बात कहनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 5250620 पर।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

0: West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं। सुनते हैं समाचार सुमैरा अकबर।

0: सुहाना सफर
1: 12:28 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं आप ही के फेवरेट प्रोग्राम सुहाना सफर के साथ। तो चलिए भाई, इस समय जो टाइम है ना नून आवर्स, इस टाइम दिल करता है थोड़ा सा रेस्ट करना और अपने पसंद के गाने चलना। तो आप लोग, बहुत सारे लोग कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस भी कर रहे हैं, तो बस आप जुड़े रहिए, थोड़ी थोड़ी देर में हम आपके कॉल्स लेते रहेंगे। तब तक इन्जॉय कीजिए आपके गाने। तो 2-3 मैसेजेस ले लेते हैं। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ललित जी USA से और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं प्रोग्राम। कमलेश रानी, राहुल, कमल, नीतू, प्रेम जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ इंडिया से। और एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है आशीष जी का। आशीष जी कहते हैं कि लास्ट वीक मैं एक वेडिंग पर गया था किसी के, और वहाँ पे मुझे एक लड़की पसंद आई। मैंने अपने पेरेंट्स को सिर्फ इतना ही कहा कि क्या आपको ये लगता नहीं कि मेरा और उनका मैच सही रहेगा, और मेरे मम्मी पापा ने उनके मम्मी पापा से बात की और सब लोगों ने हाँ कर दी। और मैं चाहता हूँ कि इस मोमेंट पर क्या आपके पास कोई गाना है, क्योंकि मैं लड़की से फ़ोन पर बात तो नहीं कर पाया, पर मैं उनको मैसेज के थ्रू मैंने उनको कहीं कहलवा दिया है कि मैं ये ऐसा मैसेज करने जा रहा हूँ और उनको कहना चाहता हूँ थैंक यू, आपने मुझे पसंद किया और मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया।
2: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर। 12:42
1: हो चुके हैं और आप इस वक्त हैं पूनम के साथ आपके ही फेवरेट प्रोग्राम में सुहाना सफ़र में, और आपके हल्के फुल्के मस्त गाने शायद आपको किसी अपने की याद दिला रहे होंगे। तो बस फील करते रहिए, फ्लाई करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ इस समय जुड़े हैं बहुत सारे लोग, विशाल, विहान, शिवती, गोकुल एंड प्रिया। प्रिया ने कह रही हैं सिर्फ इतना सा कि मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, आज बाहर का मौसम बहुत ही प्यारा है। तो आप लोग भी क्यों घर पे बैठे हो, बाहर निकलो। अगर बाहर दूर नहीं जा सकते तो एटलीस्ट अपनी गैलरी पर आ जाओ, अपने गार्डन में आ जाओ, इन्जॉय कीजिए। क्या बात है, सच में ब्यूटीफुल मैसेज है, क्योंकि किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को मोटिवेट करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप भी कहीं पर अटके पटके पड़े हैं तो थोड़ा सा बाहर ब्रीथ कीजिए, इन्जॉय कीजिए। ये जो हवा है ना, हवा के झोंके बहुत ही प्यारे हैं, और ये जो बारिश है छोटी छोटी सी, हल्की फुल्की सी, इसको भी इन्जॉय कीजिए। तो चलिए भाई, अपने साथ में ग्रीन ले लीजिए या थोड़ी सी ब्लैक टी ले लीजिए, एंजॉय कीजिए आपका ये अगला गाना।
2: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

0: सर नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीश्रा, सभी को हमारा नमस्कार। चिकनगुनिया, डेंगी, लेप्सोस्पाइरोसिस और मंकी पॉक्स के मामले मॉरिशस में दर्ज संक्रामक रोगों के प्रकोपों में शामिल हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने आज सुबह संसद की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर विपक्ष नेता जोले जोंगा द्वारा पूछे गए प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के जवाब में दी। मंत्री के अनुसार चिकनगुनिया के 2816 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 102 मामले फिलहाल सक्रिय हैं। अन्य सभी मरीजों का इलाज कर उन्हें स्वस्थ कर दिया गया है। इसके अलावा 5 मामले विदेश से दर्ज किए गए हैं। डेंगू के संबंध में 1 स्थानीय और 6 विदेशी मामले सामने आए हैं। सभी मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। लेप्टोस्पाइरोसिस के 21 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है। मृतकों में बीमारी के गंभीर लक्षण थे और वे अन्य रोगों से भी पीड़ित थे। एक मामले में मरीज की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी जब लेप्टोस्पाइरोसिस का मामला पता चला। एम्पॉक्स के 2 विदेशी मामले भी दर्ज किए गए, जिनमें 1 मॉरिशस निवासी शामिल था। दोनों मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और उनके संपर्क में आए लोगों में संक्रमण का कोई संकेत नहीं मिला है। मंत्री अनिल बेचू ने बताया कि इन बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों, पुलिस तथा चूहा नियंत्रण सेवाओं के बीच सहयोग के साथ स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत किया गया है। 2025 में ना तो कोई मुद्रा छिपाई गई है और ना ही सरकार को कोई धन हस्तांतरित किया गया है। ये बात मॉरिशस बैंक ने आज सुबह जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कही है। केंद्रीय बैंक ने इस तरह पूर्व वित्त मंत्री हंगनादेन पदयाची के बयानों का जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर कल प्रसारित एक वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया था कि वर्तमान सरकार ने 2025 में 83 बिलियन रुपये छापे हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि ऐसा फैसला क्यों लिया गया। अपने बयान में मॉरिशस बैंक ने सोशल मीडिया और कुछ समाचार लेखों में फैल रही झूठी जानकारी की निंदा की। संस्था ने ये भी स्पष्ट किया कि मुद्रा स्थिति से संबंधित जानकारी उसकी वेबसाइट पर प्रकाशित कई आधिकारिक दस्तावेजों में उपलब्ध हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी में आज अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन का महत्वपूर्ण दिन है, जहां उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला जारी है। इस सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, फ्रांस के राष्ट्रपति, अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के अधिकारी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के आधिकारिक उद्घाटन के अगले दिन आज चर्चा ठोस प्रतिबद्धताओं और अफ्रीकी फ्रांस साझेदारी के एक नए मॉडल पर केंद्रित रही, जिसका मुख्य उद्देश्य महाद्वीप के आर्थिक और सहयोग संबंधी मुद्दों को आगे बढ़ाना है। कल नैरोबी विश्वविद्यालय में आयोजित व्यापार मंच में 2000 से ज़्यादा उद्योगपति और निवेशक शामिल हुए, जो व्यावसायिक परियोजनाओं को मूर्त रूप देने और महाद्वीप में आर्थिक आदान प्रदान को मजबूत करने के उद्देश्य से एकत्र हुए थे। इस अवसर पर मॉरिशस के जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामरी ने एक गोलमेज चर्चा की अध्यक्षता की, जो मॉरिशस में व्यापार सुगमता और देश में उपलब्ध निवेश अवसरों पर केंद्रित थी। और विदेश में यूके में इन दिनों 70 से ज़्यादा लेबर सांसदों ने प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर से इस्तीफा देने की अपील की है। ये अपील तब की गई जब सत्ताधारी पार्टी को स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे सरकार के अंदर बढ़ता नेतृत्व संकट और गहरा गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। रॉयल रोड सचैमिल थ्रियोले में 55 साल के 55-year-old के श्री यशराज चंबित, जो आकाश से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह बाद के 3:30 बजे उनके घर रॉयल रोड से चैमिल थियोली से उठा

0: कर त्यामिनी स्त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। रॉयल रोड पुस्तफ्लाग में 75 साल के 75-year-old के श्री नवींद्र सोनाराम, जो विनोद से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर। 1:10 हो चुके हैं और आप अब जुड़े हुए हैं पूनम के साथ और ये प्रोग्राम है आपका, आपकी पसंदीदा गानों का। तो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जयश्री सुरीनाम से और एक बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश की है और स्पेशली अपनी मामा के लिए की है और बस इतना ही कहती हैं कि आप बहुत अच्छी हैं। सो स्वीट फुलवंती जी जुड़ी हुई हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं अपने परिवार में सभी को बहुत प्यार करती हूँ, पर ये जो प्यार है ना कभी कभी बोल नहीं पाते हम लोग, तो पर फिर भी एहसास से यही कहना चाहती हूँ कि कई काश कोई गाना सुन के एहसास कर ले कि मैं उनको कितना प्यार करती हूँ। फुलवंती जी आपको मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, आप जब आवाज़ सुनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आप सबका साथ देने के लिए। अनीता जी जुड़ी हुई हैं फ्लिको फ्लॉक से और सभी को कहना चाहती है हैप्पी ट्यूजडे, इंजॉय कीजिए आपका ट्यूजडे और गाने भी इंजॉय कीजिए। सो स्वीट वीना जी नवल फॉन्स से जुड़ी हुई हैं इस समय और एक बात कहना चाहती है कि मैंने प्यार में बहुत ताकत होती है, मैंने ये प्यार की जो ताकत है ना अपने हस्बैंड सीखी है। कई बार अप एंड डाउन आए पर उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा और हमेशा मुझे ताकत दी है और कहती हैं देव आई लव यू। थैंक यू सो मच वीना जी इतना ट्रस्ट और इतना प्यार दिखाने के लिए और अपने हस्बैंड को भी इतना प्यार देने के लिए और वहीं से आपको रिटर्न में मिलता है। तो जब आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं तो ये प्यार अपने आप ऑटोमेटिकली बन ही जाता है। चलो भाई इंजॉय करते हैं आप सबके फेवरेट गाने को।
1: RM3 Radio.

0: ना सफर सुहाना सफर।
1: कभी कभी आपने नोटिस किया है कि अच्छे गाने सुनते सुनते दिल भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और छोटी छोटी बातें भी अच्छी लगने लगती है। 1:20 हो चुके हैं और आपके साथ मैं हूँ पूनम। इंजॉय कीजिए आपकी पसंद के गाने और सभी के अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि कई लोगों को पुराने गाने पसंद होते हैं, कईयों को नए गाने पसंद होते हैं, पर हम चलाते हैं आपके लिए इस समय दोपहर के टाइम पुराने वो गाने जो सच में सुपरहिट तो हो या ना हो बट आपके दिल के बहुत करीब होते हैं।
2: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर।
1: 1:40 हो चुके हैं दोस्तों। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बस आराम से चलिए, ये रास्ता भी अच्छा हो जाएगा और ये मौसम तो वैसे ही अच्छा सा हो गया है और ये गाने तो और उसको मस्त मस्त बना रहे हैं। तो चलिए भाई, 2-3 मैसेजेस ले लेते हैं कि किसका क्या दिल में चल रहा है। तो प्रकाशवंती जी जुड़ी हुई हैं बेल्जियम से और कह रही हैं यहाँ पर बहुत ठंड है। तो मैम, मैं भी आपको बताऊँ, हमारे यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी ठंड तो आ ही गई है। उसने हमारा भी घर का रास्ता देख लिया और कह रही है कि क्या मैं एंटर कर लूँ, तो हमने भी बोल दिया आ जाइए, क्योंकि ठंड हमें चाहिए, थोड़ी सी बारिश और ठंड दोनों जगह जब मैच हो जाती है तो साथ में खाना भी बहुत अच्छा लगता है और चाय वाय तो बहुत ही क्लासिक लगती है। तो साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवानंद जी, जो कि एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं अपने प्यार और परिवार के नाम के लिए साथ में, और हम भी आप चलाने वाले हैं। साथ में बाबू अनंतवा जी भी जुड़े हुए हैं, एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं क्योंकि वो राज कपूर साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो कहते हैं कि राज कपूर साहब के जब गाने सुनता हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सर, आपका दिल खुश होता है तो हमें और भी अच्छा लगता है। साथ में नंदा जी पाई से जुड़ी हुई हैं और वो अविनाश, अभिषेक, आशील, विद्या, पति दीपक और अश्विना, गुल्लू, अरवी, पुनीता और गणेश फैमिली के लिए भी गाना सुनाना चाहती हैं। तो आप सब जुड़े रहिए, एंजॉय कीजिए आपके प्यारे प्यारे पुराने ज़माने के वो गाने जो आपकी यादों को तरोताज़ा कर देते हैं। तो ये गाना आप सबके लिए।
2: RM3 Radio.

0: सफर।
1: कभी कभी ना बस हमें एक दिन ऐसा निकालना चाहिए जिस समय सिर्फ गाने सुने, मूड अच्छा करे, और साथ में एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, खाने पर ध्यान देना चाहिए। ये टाइम जो होता है ना, इस टाइम आप फ्रूट्स खा सकते हैं, दही ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम रात को अवॉइड करते हैं इसलिए रात को नहीं खा सकते। तो दोपहर का टाइम ये आपका है, इस टाइम अच्छा खाओ, आराम से थोड़ा सा नैप लो, थोड़ा सा रेस्ट करो, फ्रूट्स खा लो, क्योंकि ये टाइम में अगर आप ये चीज़ें खाएंगे तो आपको एक तो एनर्जेटिक फील होगा शाम को, और आपको ऐसा लगेगा कि भाई हमने कुछ खाया है। सिर्फ यही नहीं कि रोटी खाई, चावल खाए या सब्ज़ी खाई, नहीं, जो बाकी चीज़ें हैं ना उसको भी अपनी प्लेटर में रखो, उसको भी थोड़ा सा इंजॉय करो, और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी ज़्यादा पियो। तो पानी पियो, इंजॉय करो, उसके थोड़ी देर के बाद आप सुन सकेंगे संक्षिप्त समाचार।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: टाइम चेक, दोपहर के 2 बज रहे हैं। गीता के साथ नमस्कार।
4: नमस्कार गिनीशा, सभी को हमारा नमस्कार। पूर्व वित्त मंत्री रेंगा नायडेन पदयाची द्वारा अपनी फेसबुक पेज पर किए गए एक पोस्ट के बाद बैंक ऑफ मॉरिशस ने आज सुबह प्रतिक्रिया दी। एक बयान में बैंक ने कहा कि उसने सोशल मीडिया पोस्टों और समाचार लेखों में 2025 में कथित तौर पर 83 बिलियन रुपए छापे जाने संबंधी फैलाई गई झूठी खबरों की जानकारी ली है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने स्पष्ट किया कि 2025 में ना तो कोई मुद्रा छापी गई है और ना ही सरकार को कोई धनराशि हस्तांतरित की गई है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने ये भी कहा कि लेन देन से संबंधित विवरण उसकी वेबसाइट पर प्रकाशित बुलेटिन में देखे जा सकते हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी में आज अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन का महत्वपूर्ण दिन है, जहां उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला जारी है। इस सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, फ्रांस के राष्ट्रपति, अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के अधिकारी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के आधिकारिक उद्घाटन के अगले दिन आज चर्चाएं ठोस प्रतिबद्धताओं और अफ्रीका फ्रांस साझेदारी के एक नए मॉडल पर केंद्रित रही, जिसका मुख्य उद्देश्य महाद्वीप के आर्थिक और सहयोग संबंधी मुद्दों को आगे बढ़ाना है। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस मनाया जाता है। ये दिन आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। नर्सेस स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ होती हैं। वे दिन रात मरीजों की देखभाल कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और नया जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मॉरिशस में स्वास्थ्य केंद्रों में इनकी कमी को देखते हुए विदेशी नर्सों की भर्ती की जा रही है। कुछ निजी क्लिनिकों में इनकी बढ़ती संख्या देखी जा सकती है। और विदेश स्तर पर यूके में इन दिनों 70 से ज़्यादा लेबर सांसदों ने प्रधानमंत्री केर स्टार्मर से इस्तीफा देने की अपील की है। ये अपील तब की गई जब सत्ताधारी पार्टी को स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे सरकार के भीतर बढ़ता तनाव संकट और गहरा गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। अविनी दे पायों के मेजिन कॉन्डो मास्क में 82 साल के 82-year-old के जनाब भाई कसम गंगा पासांत इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज शाम 5:30 बजे उनके बेटे मोहम्मद हनीफ गंगा पासांत के घर अविनी दे पायों के मेजिन कॉन्डो मास्क से उठाकर मेजिन कॉन्डो मास्क का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 5:30 PM। सुल्फेरिनो नंबर 1 वाकवा में 51 साल की 51-year-old की मिसेस शिरीना बाई मोफीजुडी, जो शिरीन अंतवाहू से ज्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज सुपहरबाद के 2:45 बजे उनके शोहर शहजाद अंतवाहू के घर सुल्फेरिनो नंबर 1 वाकवा से उठाकर फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
5: Your news on NBC Play.

MBCRadio.tv. MBCRadio.tv. You're listening to RM3 Radio. Man.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: आप जुड़े हुए हैं सुहाना सफ़र के साथ और मैं हूँ आपके साथ पूनम। और बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स के बाद हम भी बहुत खुश होते हैं कि जब आपके कॉल्स और मैसेजेस आते हैं और उसके साथ में आपकी फरमाइशें भी होती हैं प्यारी प्यारी सी, बहुत ही प्यारे गानों की, पुराने से लेके शुरू। मतलब हम बिल्कुल ये तो नहीं कहेंगे कि लेटेस्ट गाने हम आपको सुनाने वाले हैं, बट फिर भी 90s तक तो हम जंप मार ही सकते हैं। तो अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5250-6200 पर और कॉल कर सकते हैं 4028070 पर। तो चलिए भाई दो मैसेजेस ले लेते हैं, प्यारे प्यारे से हैं। राधा जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ और अपनी दोस्त रागिनी के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं और बस ये कह रही हैं कि उनके सावरियाँ तो यहाँ पर नहीं है पर गाने तो मैं सुना ही सकती हूँ। और ये दोस्ती भी ऐसी ही होती है भाई, कोई ना एब्सेंट हो तो दूसरा जना उसको फुलफ़िल कर देता है, उसकी याद को तरोताज़ा कर देता है। तो दोस्ती तो ऐसी ही होती है जी। ज्योति जी शातो बनारस से जुड़ी हुई हैं और एम जी आशनी रेखा सुरेखा और मधु फैमिली को एक गाना सुनाना चाहती हैं। उसके साथ में अनिता रामदोस जी भी जुड़ी हुई हैं और साधना रागिनी और सभी आरंभी लिसनर्स के लिए गाना सुनाना चाहते हैं। और सूरज शर्मा साजदा जी भी साथ में जुड़ चुके हैं और वो भी बहुत ही प्यारे प्यारे गानों की फरमाइश कर रहे हैं। तो बस आप जुड़े रहिए आपके ही अपने प्रोग्राम के साथ। मैं हूँ आपके साथ पूनम।
2: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर
1: में आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। सच बात है, ज़िंदगी सच में ही बहुत सुहानी अगर उसे हम अच्छी तरीके से साथ अपने चलाएं तो, और किसी को एहसास दिलाएं कि आप भाई कितने इम्पॉर्टेंट हैं। यकीन मानिए आपकी सुबह भी सुंदर हो जाएगी, शाम भी सुंदर होगी और रात को भी आपको अच्छी नींद आएगी, क्योंकि आप किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ऐसे जब आपके मैसेजेस आते हैं तो हमें भी पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी में कौन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भाई जुड़ते हैं दो तीन मैसेजेस की और श्यामा जी, श्यामा रघुनंदन जी जुड़े हुए हैं और विश्वानी दुखी, वीना रामफल, नंदा उकलू, देविका जी के लिए और जयप्रकाश भाई, भाभी नंदा और केशव युधिष के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। और उन्होंने एक फरमाइश बहुत ही प्यारे गाने की है, साथ में माला जी का तो फोन से जुड़ी हुई हैं और एक किसी स्पेशल के लिए एक गाना सुनाना चाहती हैं। अब वो स्पेशल कोई भी हो सकता है, वो हम तो नहीं पूछेंगे, बट जिसके लिए भी आपने ये मैसेज किया है हम तो यही कहेंगे वो हमेशा आपका स्पेशल बना रहे या बनी रहे। चलिए जी, ललित जी जुड़े हुए हैं USA से और वो भी एक बहुत ही प्यारे का गाने की फरमाइश कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरी एक स्पेशल यानी कि मेरी वाइफ के लिए प्यारा सा गाना ज़रूर चलाइएगा और हम सारे उम्मीद कर रहे हैं कि आप ज़रूर चलाएंगे। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि भाई सबके लिए गाने चलाती हूँ, तो आप भी ज्वाइन कीजिए हमको। अगर आपको कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5250620 पर और बता सकते हैं अपनी फरमाइश, क्योंकि अभी मैं और आपके साथ हूँ 30 मिनट्स।
2: RM3 रेडियो

0: सुहाना सफर।
1: 2:45 हो चुके हैं दोस्तों और आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गाना लोग क्या कहेंगे। और सच बात है कि लोग क्या कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि लोगों ने क्या देखा और क्या जाना, बस ये तो खुद को पता होता है कि हमने ज़िंदगी में क्या करना है, क्या किया। और हमारी ज़िंदगी में गिल्ट नहीं होना चाहिए, अगर गिल्ट होता है तो थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, बट फिर भी कोई बात नहीं, ये तो ज़िंदगी है, प्यारी है, नोटिस भी करती है दुनिया। और म्यूज़िक के साथ में आप जब जुड़ते हैं तो आप कुछ ऐसे एकदम से लाइट से हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? क्योंकि आपके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाती है और आपको लगता है कि अरे गाने तो बहुत ही प्यारे चल रहे हैं, तो फिर इंसान बहुत ही कूल और मूड अच्छे मूड में हो जाता है। तो ये टाइम आपका है, इसको एंजॉय कीजिए और साथ में जुड़े रहिए, साथ में कुछ खाते पीते रहिए। ये नहीं कि अकेले बैठे रहिए और सिर्फ गाने सुनते रहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बहुत ही दिल से और मोहब्बत के साथ कीजिए। और मैं तो आपके साथ हुई हैं और मेरे बाद में ही भी बहुत सारे आरजेस आएंगे रात तक आपके साथ, आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए आते हैं हम। सिर्फ यही कहने आते हैं कि आप बस खुश रहें, मस्ती में रहें, म्यूज़िक के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि म्यूज़िक आपको बहुत ही प्यारा और कूल बनाता है। चलिए भाई इंजॉय करते हैं अगला प्यारा सा गाना मोहम्मद रफ़ी की और सुषमा जी की आवाज़ में बहुत ही जिंदा सुंदर गाना क्या हुआ तेरा वादा।
2: RM3 Radio.

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: तो दोस्तों धीरे धीरे आज का सुहाना सफ़र यहीं तक था। गानों के साथ और आपके प्यार के साथ वक्त सच में बहुत ही अच्छा गुजरा। आज तो 2 घंटे का नॉर्मली होता है ये प्रोग्राम, बट आज 3 घंटे का हुआ और मैं थी आपके साथ पूनम। मेरे बाद आप सुन पाएंगे एक प्यारा सा प्रोग्राम सुमी सरकार की आवाज़ में आज की चर्चा। और तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ, और आपको हम मनोरंजन तो कराते हैं साथ में यही कहते हैं खुश रहिए। बस उम्मीद है कि आपने ये सच में प्रोग्राम बहुत इन्जॉय किया होगा और आपके मैसेजेस और आपके कॉल मुझे बहुत खुश देते हैं। तो बस ये लास्ट सॉन्ग मेरी पसंद का आप सबके लिए।
2: RM3 रेडियो

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: Continuous music.

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: टाइम चेक दोपहर के 3 बज रहे हैं।
4: नमस्कार परी, सभी को हमारा नमस्कार। एक नई अफ्रीका, ज्यादा मजबूत, ज्यादा एकजुट और ज्यादा लचीली, यही संदेश आज नैरोबी में आयोजित अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन के आधिकारिक उद्घाटन समारोह में शामिल लगभग 40 अफ्रीकी राष्ट्र अध्यक्षों और सरकार प्रमुखों ने दुनिया को दिया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम का सम्मेलन कक्ष में पहुंचने पर केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने स्वागत किया। राष्ट्रपति रूटो का भाषण, जो अफ्रीकी महाद्वीप के आत्म वित्त पोषण पर केंद्रित था, विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाला रहा। भाषणों के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण घड़ी फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों द्वारा अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दिलाने के समर्थन की पुनः पुष्टि करना रही। चिकुनगुनिया, डेंगू, लेप्टोस्पायरोसिस और मॉन्की पॉक्स के मामले मॉरिशस में दर्ज संक्रामक रोगों के प्रकोपों में शामिल हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने आज सुबह संसद में कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष नेता जूली शोगो द्वारा पूछे गए एक प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के जवाब में दी। मंत्री के अनुसार चिकुनगुनिया के 2816 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 102 मामले फिलहाल सक्रिय हैं। अन्य सभी मरीजों का इलाज कर उन्हें स्वस्थ कर दिया गया है। इसके अलावा 5 मामले विदेश से दर्ज किए गए हैं। डेंगू के संबंध में 1 स्थानीय और 6 विदेशी मामले सामने आए हैं। सभी मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। लेप्टोस्पायरोसिस के 21 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है। मृतकों में बीमारी के गंभीर लक्षण थे और वे अन्य रोगों से भी पीड़ित थे। 1 मामले में मरीज की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, जब लेप्टोस्पायरोसिस का पता चला। एमपॉक्स के 2 विदेशी मामले भी दर्ज किए गए, जिनमें 1 मॉरिशस निवासी शामिल था। दोनों मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और उनके संपर्क में आए लोगों में संक्रमण का कोई संकेत नहीं मिला है। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस मनाया जाता है। ये दिन आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। नर्सेज स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ होती हैं। वे दिन रात मरीजों की देखभाल कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और नया जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मॉरिशस में स्वास्थ्य केंद्रों में इनकी कमी को देखते हुए विदेशी नर्सों की भर्ती की जा रही है। कुछ निजी क्लिनिकों में इनकी बढ़ती संख्या भी देखी जा सकती है। और विदेशी खबरों में हंटा वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज के अंतिम यात्री भी अब उतर चुके हैं, जबकि अधिकारियों ने इस घातक प्रकोप से जुड़े 3 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि की है। एमवी होंजेस कल टेनेरिफ से नेदरलैंड्स के लिए रवाना हुआ, जब उसके अंतिम 6 यात्री और कुछ सदस्य दल जहाज से उतर गए। इस जहाज पर यात्रा करने वाले 3 यात्रियों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से 2 में वायरस की पुष्टि हुई थी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। अवेन्यू डे पायों के मेजिन कॉन्डोमास्क में 82 साल के 82-year-old के जनाब भाई कसम गंगा पौसांड इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज शाम 5:30 बजे उनके बेटे मोहम्मद हनीफ गंगा पौसांड के घर अवेन्यू डे पायों के मेजिन कॉन्डोमास्क से उठाकर मेजिन कॉन्डोमास्क का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 5:30 PM। रॉयल रोड सचम मिल ट्रियोले में 55 साल के 55 ईयर ओल्ड के श्री यसराज चंबित, जो आकाश से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज सफर बाद के 3:30 बजे उनके घर रॉयल रोड से चमिल थ्रियोले से उठाकर टेमिनिस थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। रॉयल रोड बस द फ्लैग में 75 साल के 75-year-old के श्री नवेंद्र सुनाराम, जो विनोद से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

मंगलवार 12 मई रेडियो मॉरिशस पर और साथ ही जितने श्रोता और दर्शक हमें एमबीसी के चैनल 3 के जरिए देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार। स्वीकार करें आज की चर्चा, इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। सुप्रभात आप सभी को। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम को इस समय आप लाइव सुन रहे हैं रेडियो

0: मॉरिशस पर, साथ ही इसे आप देख पा रहे हैं एमबीसी के चैनल 3 पर और इसका सीधा प्रसारण इस समय हो रहा है रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर। आपको ये भी याद दिला दें, इस प्रोग्राम का रीब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही सपहर के 4 बजे एमबीसी के चैनल 3 पर। तो आज की चर्चा इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अभी से लेकर 10 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं और आज एक बहुत ही खास विषय को लेकर हम आ गए हैं आपके साथ। हर महीने मई महीने की 15 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, और आज के समय में परिवार का क्या महत्व है इस पर हम बात करेंगे, परिवार में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे और परिवार से जुड़ी जो समस्याएं आजकल हमें आए दिन देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, इस पर हम बात करेंगे। और इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ साईवानी शंकर शंभू जी जुड़ चुकी है, जो एक साइकोलॉजिस्ट है और बच्चों और साथ ही बच्चों के माता पिता के साथ वो बहुत काम करती है। तो साईवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सुमी जी,
0: और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। परिवार की यदि हम बात करें तो परिवार का अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है ना
1: जी,
0: क्योंकि परिवार ही हमारे जीवन का नींव है।
1: बिल्कुल,
0: हम जन्म लेते हैं, माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं और बड़े होने तक माता पिता के सानिध्य में हम रहते हैं, तो माता पिता के बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और परिवार की बात करते हैं तो सिर्फ हम माता पिता तक सीमित नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी आते हैं जिनसे हमें बातें जानने को मिलती है संस्कारों के बारे में, हमारे जीवन शैली के बारे में। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का क्या महत्व है।
1: परिवार, फैमिली, ये शब्द शायद उनका महत्व सभी को नहीं आएगा, मतलब उनका जो गहराइयाँ हैं, क्योंकि परिवार से ही हम अपना जीवन की शुरुआत करते हैं। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो माता पिता के बहुत ही सानिध्य के साथ फिर आगे आगे चलकर उनके ही परवरिश से लेकर जब बड़े हो जाएंगे तो अपना परिवार शुरू कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो फैमिली दिवस है मनाया गया, लेकिन हम 15 मई को भी ये मनाएंगे। तो ऐसे परिवार, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फैमिलीज, 6 टाइप्स ऑफ फैमिलीज है,
0: 6 तरह की कैटेगरीज में उसे बांटा गया है।
1: सबसे पहला है न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पर माता पिता और बच्चा या बच्ची,
0: जो अभी के समय में काफी कॉमन है।
1: पहले के जमाने में एक्सटेंडेड फैमिलीज होते थे, ये सेकंड टाइप। एक्सटेंडेड मतलब हमारे यहाँ दादा दादी भी है, चाचा चाची, जॉइंट फैमिली। हाँ, देन वी हैव सिंगल पेरेंट फैमिली, जैसे एक का शायद देहांत हुआ, एक ट्रेजिडी हुई या सेपरेशन हुआ, डाइवोर्स, सो सिंगल पेरेंट। फिर आता है चाइल्ड लेस फैमिली, तो अबेंडन चिल्ड्रन, तब ये गवर्नमेंट आता है, CDU, ये सब, या दोनों माता पिता कुछ कारण हो सकते हैं, उनका एक ट्रेजिडी हुआ, उनका देहांत हो गया, सो उनके माता पिता नहीं। फिर आता है स्टेप फैमिली, जो बच्चे को गोद लिया गया, अडॉप्टेड, सो स्टेप फैमिली, और एक पेरेंट ने फिर से शादी किया तो ये एक स्टेप फैमिली बन गया। फिर अंतिम आता है ग्रैंड पेरेंट फैमिली, जिनका बड़े बुजुर्ग है, नाना नानी या दादा दादी है, तो वो भी अपने नाता नाती पोते को संभालते हैं,
0: क्योंकि जिनके अपने माता पिता नहीं है।
1: जी, तो और ये भी अलग कारण हो सकते हैं, शायद माता पिता है लेकिन बच्चे को संभाल नहीं सकते,
0: पता या फिर कहीं बाहर काम करते हैं, या कोई भी कारण हो सकता है,
1: या उनका देहांत हो गया, ये सब। सो ये 6 टाइप्स ऑफ फैमिलीज, इसमें आदर्श वाला कौन सा है, द आइडियल फैमिली?
0: अगर इन सभी 6 पर हम नजर दौड़ाए तो नंबर 2 पर हमारी नजर जाती है, एक्सटेंडेड फैमिली कहे या जॉइंट फैमिली कहे, जो अभी के समय में भी है लेकिन उतनी नहीं है, क्योंकि समय के साथ हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, हमारी जीवन शैली बदल गई है, बच्चे अपना घर चाहते हैं शादी के बाद, या फिर विदेश चले जाते हैं अपने करियर के बारे में सोचकर, तो ऐसे में जो है धीरे धीरे एक्सटेंडेड फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होते जा रहे
1: हैं। बिल्कुल, और ये कब होता है, जब जैसे आपने कहा ये जीवन का ही भाग दौर बदल गया, इट्स अ रश वर्ल्ड। फिर ऐसा भी सुनने को आया कि माता पिता, बड़े बुजुर्ग, ग्रैंड पेरेंट्स, जब

0: बच्चे का ये विवाह हो गया तो वो स्वयं बोलते हैं आप अपना गृहस्थी अब बसाए अपने आप, आप आ जा सकते हैं लेकिन वी वॉन्ट सम पीस ऑफ माइंड अब, तो ये भी होता है. इट्स गुड, मतलब कई के अलग अलग पहलू होते हैं, सो इट्स अ मिक्स ब्लेसिंग्स. जैसे पहले के ज़माने में जब माता पिता के साथ दादा दादी नाना नानी चाचा चाची सब जुड़े हुए हैं तो बच्चे का संस्कार अलग होता है. यस, अब न्यूक्लियर फैमिली में क्या हो रहा है, सब काम पर जा रहे हैं. जब बच्चे पाठशाला से लौटकर घर आते हैं तो वो अकेले अकेले पता नहीं क्या करते हैं, शायद अपना होमवर्क खत्म करेंगे या दोस्तों के साथ खेलने जाएंगे. कोई गाइडेंस नहीं है, निगरानी नहीं है,
1: देखने वाला नहीं है.
0: तो शायद वो कहते हैं परोस के, लेकिन परोस भी अपना बच्चा भी संभालेगा ना. सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि अब जो जमाना आ रहा है हम अपने बच्चों, क्योंकि वो ही आगे की पीढ़ी ले जाएंगे ना आगे आगे, तो उनकी परवरिश और उनके संस्कार हम कैसे जारी रखेंगे. पहले के ज़माने में तो नहीं हो सकता, बिकॉज पहले के ज़माने में इतना काम था लेकिन परिवार को बहुत महत्व देते थे. नाउ देते हैं लेकिन एक बदलाव सा आ गया है. कौन से बदलाव, अभी हम एन्यूमरेट बाद में बात करेंगे. सो वी हैव ऑल दैट. फिर आता है जो सिंगल पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स बहुत सारे जो बच्चे और पेरेंट आते हैं हमारे यहाँ फॉर काउंसलिंग, क्योंकि कुछ कारणों के वजह से उनका सेपरेशन हो गया. ठीक है, लेकिन जब सेपरेशन होता है तो ऐसा नहीं कि हम दुश्मन बन गए, क्योंकि प्यार से ही हम जुड़े थे. अब कोई कारण हो गया कि हम अलग हो गए. तो जब बच्चे आ गए तब इट्स वी हैव टू थिंक, बहुत सोचना पड़ता है सेपरेट होने से पहले, क्योंकि
1: अफेक्ट करता है.

0: सेम, जब एक का निकल गया शायद माता शायद पिता, तो उनका पूरा ये संसार टूट जाता है, बिखर जाता है, जैसे एक ग्लास को स्मैश किया, तो उनका ये संसार अब फिर से जुड़ने वाला तो नहीं, लेकिन उनकी परवरिश ठीक तरह से कैसे हो तो एक पार्टनरशिप बनता है. इट्स ओके टू स्टार्ट लाइफ अगेन, ये होता है, इज गुड. लेकिन बच्चे का यू हैव टू कीप अ फ्रेंड काइंड ऑफ रिले, मतलब मित्रों के साथ की तरह, ताकि बच्चे का ये स्कूल हुआ, ये परीक्षा होने वाला है, ये छुट्टियां हैं, ये बीमार पड़ गई, यू नो, चेक द होमवर्क, तो एक पार्टनरशिप जैसा, क्योंकि अपना अहम को साइड में रखते हुए बच्चों को ज्यादा ये
1: इम्पोर्टेंस देना चाहिए.
0: जी,
1: क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य है ना, आने वाले कल का भविष्य है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की परवरिश अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थान रखती है. और परिवार की बात करें तो माता पिता बड़े बुजुर्ग आते ही है, लेकिन बच्चे जो है मुख्य, मतलब कि एक सेंटर पॉइंट होता है ना, क्योंकि हर कोई जब परिवार के बारे में सोचता है तो बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं. और अभी के समय में जिस तरह से परिवारों में जो है जो माहौल बन रहा है, हर कोई अपने अपने जीवन में व्यस्त है, बच्चे को समय तो दे रहे हैं, लेकिन कभी कभार उस समय को हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों से भी पूरा करते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमें अभी के समाज में देखने को मिल ही रहा है. तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी ही शिक्षा में किसी चीज़ की कमी है, या फिर हमारी जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई है कि हम उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं. तो एज ए साइकोलॉजिस्ट इसे आप कैसे देखती हैं?
0: जब माता पिता बहुत व्यस्त है, ये जाहिर सी बात है कि बच्चे वो अटेंशन पाना जानते हैं. जब फोन पर है या किस कोई अतिथि आ गया घर पर या एक सामाजिक इवेंट पर है, तभी ये बच्चा माँ के पास जाएगा या पिता के पास, या हमें कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए. क्यों ये ऐसा क्यों होता है? ये जानबूझकर करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम पर ये अटेंशन नहीं मिल रहा,
1: नहीं मिल रहा,
0: हमको इग्नोर करता जा रहा है. और ये बहुत ही कम उम्र से ही शुरू होता है, मतलब शायद 10 महीने का एक शिशु या 1-2 साल के बच्चे रोने पड़ते हैं, मामा को ढूंढते हैं ऐसा. तो जब आपने कहा कि पेरेंट्स मटेरियलिस्टिक से उनका ये समय पूरा करते हैं, तो क्या होता है, माता पिता प्रोवाइडर्स बन जाते हैं और बच्चे कंस्यूमर्स. जैसे हम एक शॉप में जाते हैं, हम कुछ कंस्यूम करने के लिए कुछ खरीदते हैं, तो उसी प्रकार इट्स अ साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर रिसर्चर्स ने देखा गया में ये बदलाव देखा कि ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ देंगे या समय देंगे, तो बच्चे भी एक रोबोटिक तरह का जीवन बिताना शुरू करते हैं.
1: बिल्कुल, क्योंकि बच्चे को फिर ये एक ये हो जाता है ना कि मैं ऐसे करूंगा तो मुझे इसके बदले में वो मिलेगा ना.
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि बहुत से माता पिता हम देखते हैं इसी चीजें हमारे भी नजर में आती है, देखने को सुनने को, कि ऐसे करोगे ना तो तब जाकर तुमको ये मिलेगा, या वैसे करोगे तो जाकर, या फिर बच्चा जिद्दी हो जाता है, उसे पता है कि वो मांगेगा, वो रोएगा, वो जिद करेगा, तो माता पिता को देना ही पड़ेगा. तो ऐसी स्थिति में जब माता पिता आ जाते हैं तो कभी कभार उन्हें मजबूरी में चीजों को करना पड़ता है,
0: और फिर समाज की नजर में एक एम्बरेसमेंट होता है, तो चलो चलो दे देते हैं ताकि लोग हमको ना देखें, ना तो ये बहुत कठिन होता है माता पिता के लिए, क्योंकि अचानक से इट कैन बी अ बिजनेस काइंड ऑफ मीटिंग इवेंट, तो बच्चे भी अलाउड है, तो ये उनके संस्कारों में पड़ता है कि संस्कार के नींव से शुरू होता है कैसे हम व्यवहार करते. जैसे यहाँ हम एक स्टूडियो में है, एक शिष्टाचार होता है, हम एक मॉल में जाएंगे तो अलग होगा,
1: अलग
0: है ना, परिवार में अलग होगा, लेकिन द फाउंडेशन जो नींव है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो माता पिता ही देते हैं. तो ज्यादातर यदि मटेरियलिस्टिक ना दें और समय दें, इट कैन बी जैसे वी कॉल इट क्वालिटी टाइम. क्वालिटी टाइम मतलब 1 घंटा 2 घंटे जरूरी नहीं, शायद 10 मिनट भी हो, लेकिन क्वालिटी, कोई लैपटॉप फोन टैबलेट नहीं, बच्चे का भी नहीं, आपका भी नहीं, है ना, आप पूरी तरह से बच्चे के साथ है, पूछेंगे, बात करेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे, या उनका किताब पुस्तक कॉपी बुक देखेंगे, उनकी शिक्षा, तो द 10 मिनट्स ये याद रखेगा बच्चे को.
1: और आपने कहा कि रूल्स जैसे सब पर लागू होते हैं, ये नहीं कि अगर हम बच्चे को कह रहे हैं कि आप ये नहीं करो तो पेरेंट्स करें, जैसे कि अगर हम बच्चे को कह रहे हैं कि इस समय आप फोन टैबलेट वगैरह का इस्तेमाल

0: ना करे, वहीं पर पेरेंट्स कर रहे तो इट्स नॉट फेयर, क्योंकि बच्चा देख रहा है आपको ना। क्योंकि अगर आप उस पर एक नियम लागू कर रहे हैं कि ये सही नहीं है या ये ठीक नहीं है, तो वही नियम आप पर भी लागू होना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो है जो आप बोलते हैं उससे ज्यादा बच्चा देख कर सीखता है,
1: इमिटेशन से
0: सभी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, है ना।
1: और जो आप करेंगे वो ही बच्चन वो
0: वही
1: लेकर जाएगा। सो इसी कारण ये परिवार इज वेरी इंपॉर्टेंट। और परिवार बच्चे से ही शुरू नहीं होता, जब किसी का विवाह होता है तब से शुरू होता है, जब किसी से प्यार होता है तब भी से शुरू होता है, है ना। क्योंकि व्यक्ति से हमने ये प्रेम कर लिया तो उनके भी माता पिता है या परिवार है फिर दोनों की तरफ से। सो उस समय से ही ये माइंडसेट ब्रॉडन्स, मतलब बड़ा हो जाता है कि हाँ यदि एक परिवार शुरू करेंगे, गृहस्थी में जाएंगे तो कैसा, व्हाट इज द प्लान, जैसे फैमिली प्लानिंग करते हैं ना, तो ये बहुत ही आवश्यक है।
0: चलिए अगला सवाल हमारा आपसे ये होगा कि अगर हम बच्चों के मानसिक विकास की बात करें या बच्चे के किसी भी जो है डेवलपमेंट की बात करें, चाहे लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को ले ले, तो परिवार कितना बड़ा रोल प्ले करता है।
1: बिल्कुल। सो दोनों पहलू होते हैं, इट्स अ मिक्स ब्लेसिंग्स। जैसे कि कुछ आ गया स्कूल में, पाठशाला में, तो माता पिता को ये गौर रखना है, ध्यान रखना है कि बच्चे में बदलाव क्या क्या आता है बहुत कम उम्र से ही। यदि वो नेचुरली एनर्जेटिक है, वो कूद कर हंस कर कुछ बात करेगा, अचानक से सहमा सहमा सा बन गया, शांत में है, अपने कमरे में बैठा है, सो इट्स ऑलरेडी विजिबल, है ना। तो उससे पूछना चाहिए कि क्या हुआ, कुछ ठीक नहीं है। यदि वो नहीं बोलेगा तो मित्रों के साथ या अध्यापक, ये दिस आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स फॉर अ चाइल्ड, जो पेरेंट्स होते हैं, फिर उनके अध्यापक, उसके बाद मित्र, फिर परिवार, मतलब एवरीवन है, दादा। तो जब एक बच्चा एक कठिनाई से गुजर रहा है तो इमोशनल सपोर्ट एंड फैमिली सपोर्ट, कुछ ना कुछ हो जाता है। इट कैन बी द चाइल्ड इज टू बी ब्लेम्ड, उनकी गलती है, लेकिन पहले से यदि हम डांटेंगे ना तो और भी दूर चलाता जाएगा। वो खोलेगा नहीं अपनी मन की बात, बोलेगा तो ये कठिन हो जाएगा। तो जस्ट लिसन, आप अपना समय दें, उनको सुने आराम से, उनको शांत करें, सूदिंग कि हम आपके साथ हैं, जो आपने किया शायद वो उसके, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन आप ठीक है, भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फिर बाद में अच्छा आपने किया, क्यों किया, क्या हुआ था, किसी ने मजबूर किया, स्थिति के अनुसार, क्योंकि ये भी हो सकता है ना, स्थिति के आधार पर हम कुछ ना कुछ ये गलती कर बैठे, इंटेंशनली शायद नहीं, है ना। तो जब ये आता है, अच्छा ये क्या कर सकते थे यदि ये ना करे, और ये ही संस्कार है, क्योंकि पहले हम गलती करते हैं, वापस से दोहराएंगे तो ये गलती नहीं होगा, क्योंकि हम जानबूझ कर करते हैं। तो इसीलिए जब बच्चे अपने मन की बात कहेंगे तो माता पिता ये सेपरेट करें, जो आपने किया वो गलत है लेकिन आप अच्छे बच्चे हैं, फिर से आप नहीं दोहराएंगे, ये आप हमसे आश्वासन दें।
0: और कहीं ना कहीं ये चीज़ सिर्फ पेरेंट्स और बच्चों पर ही लागू नहीं होती है, आई बिलीव ये सारी चीज़ें हर एक रिश्ते में आती है। क्योंकि परिवार की बात करते तो उसमें सिर्फ माता पिता ही नहीं आते, भाई बहन बोले, पति पत्नी बोले, या अन्य रिश्ते हो गए, मतलब कि कोई सामने वाला अगर गलती कर रहा है और वो आपके पास आ रहा है अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, तो हम उसे जज ना करें, इन अदर वर्ड्स ना, या फिर अपना जो है कंक्लूजन ना निकाले, पहले तो सुने, समझने की कोशिश करें। और बहुत से लोग इसलिए भी परिवार में एक दूसरे से शेयर करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि उसे लगेगा कि आज मैंने अपनी परेशानी बोली, कल को हर बात पर मुझे उस पर ताना दिया जाएगा ना, ये एक काफी कॉमन चीज हो जाती है। तो फिर ऐसे में चलते, फिर वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि मैं बोलने जाऊंगा तो मेरे साथ ऐसा ही होगा, इसलिए वो बोलता भी नहीं है, और समय के साथ वो दूरियां बढ़ते जाती है।
1: जी,
0: इस पर आप क्या कहेंगे?
1: कम्युनिकेशन पर आप आ गए, ये सेकंड है। सो पहले इमोशनल सपोर्ट, फिर आता है हेल्दी कम्युनिकेशन। हेल्दी मतलब जहाँ पर एक रिस्पेक्टफुल और ओपन वार्तालाप, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जहाँ से मतलब एक वार्तालाप में, जैसे अब हम कर रहे हैं, वी आर कीपिंग आवर पॉइंट्स, है ना, हम अपने पहलू दे रहे हैं, ये होता है फैमिलीज में। जब बच्चे भी परिवार के साथ

0: आराम करते हैं, तो इस तरह का भी ये होता है कि बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू हम सुने, फिर हम अपना भी दें, उनका ये नीचे ना दिखाने की कोशिश करें आपने जो कहा सही है, लेकिन हमारा भी ये सुने। फिर आता है जो एक डिस्कशन, जैसे कुछ गलत हुआ तो उस पर डिस्कस हो गया, कहते हैं ना बहुत प्रॉब्लम्स आ गए घर पर, बहुत ही ये आ रहा है आर्ग्यूमेंट्स। तो दो चीज़ होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्कशन। आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है कि कौन सही है, जैसे हम और आप आर्ग्यू कर रहे हैं तो हम सही है, ये हम पूरी तरह से लड़ेंगे और कहेंगे कि नहीं हम सही, हालांकि हम गलत ही है लेकिन वी आर नॉट थिंकिंग रैशनली। ये है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट से बेहतर है डिस्कशन। डिस्कशन क्या है कि क्या सही है, जो चीज़ हम कह रहे हैं ना, ना कि व्यक्ति, ईगो को हम साइड में रखते हुए हम कह रहे हैं ये वाला चीज़ ज़्यादा अच्छा है, ना कि जो आपने कहा। सो दिस इज व्हाट इज राइट रादर देन हु इज राइट। तो आर्ग्यू ना करते हुए हम डिस्कस करें। अब यदि बच्चे छोटे हैं, अनहेल्दी कम्युनिकेशन भी होता है, सो बच्चों के सामने ज़्यादा आर्ग्यू डिस्कस ना करें, क्योंकि ये असर उनको उनकर पर जाता है और वो जानते नहीं किस विषय पर ये हो रहा है, वो सोचेंगे अरे हमारे कारण पापा और मामा लड़ रहे हैं। पहली चीज़ ये आता है और ये ऑटोमेटिक है, नेचुरल है, इट्स इंस्टिंक्टिव।
1: और कहीं ना कहीं माता पिता में जो छोटी मोटी अनबन होती है उसका भी एक गहरा असर बच्चों पर पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना, परिवार में जो है एक डिसबैलेंस आ जाता है, एक अशांति सी फैल जाती है और बच्चे के मन में डर होता है कि मैं कुछ बोलूंगा तो फिर वो लोग आपस में बहस करेंगे।
0: इसी कारण वो अपने मित्रों की ओर जाते हैं या अलग लोग की ओर जाते हैं, शायद वो अच्छे लोग हो लेकिन बुरे संगत का भी शिकार बन सकते हैं। इसी कारण माता पिता को ध्यान रखना है। वी कैन हैव अ डिस्कशन विद द फैमिली, माता पिता कपल, तो बच्चे को कुछ चीज़ों में व्यस्त रखे और अलग कमरे में जाए, सॉल्व करे, फिर वापस आए।
1: चलिए ऐसा करते हैं कि जितने श्रोता जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो 402-808-5 है नंबर हमारा, आप हमें बेशक कॉल कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो मई महीने की 15 तारीख को हर वर्ष मनाया जाता है, इस पर आज हम बात कर रहे हैं, तो आप अपने विचार या आपके मन में कोई प्रश्न है तो बेशक आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए एक गाने के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं।

0: चलिए आज की चर्चा प्रोग्राम इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, परिवार के महत्व को उजागर कर रहे हैं। और परिवार की बात करें तो आजकल हमारे परिवारों पर एक काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, काफ़ी बाहरी जो है दखल अंदाजी कहे, ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि वो किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से ही, हालात कभी कभार हमारे ऐसे हो जाते हैं जो इन्फ्लुएंस का काम करते हैं ना। तो किस तरह के जनरल इन्फ्लुएंसेस आजकल हमें हमारे फैमिली में या आपसी रिश्तों में नज़र आते हैं?
1: परिवार का ये भूमिका है बच्चों को और आगे की पीढ़ी को बढ़ाना, दैट्स द मेन
0: एग्जैक्टली
1: गोल ऑफ अ फैमिली, है ना। तो परिवार जब शुरू होता है, हर किसी का एक पर्सनालिटी कैरेक्टर, अपना अपने पसंद की चीज़ें, प्रेफरेंसेस, ये सब होता है। तो ये पास डाउन होता है बच्चों पर, एटीट्यूड, बिहेवियर, अपना ये बर्ताव, कैसे हम कोप करते हैं स्ट्रेटजीज से, यू नो, कोपिंग डिफेंस मैकेनिज्म, कुछ स्थिति आ गया, परेशानी है तो हम उसे कैसे फेस करते हैं, तो ये जाता है। तो टू अवॉइड, मतलब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी है और निगेटिव भी है दोनों, क्योंकि एक मनुष्य परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट सिर्फ परमात्मा होता है, हम फिर भी इंसान हैं। सो हमारे में भी कमियां हैं, गुण है, अवगुण भी है, लेकिन ज़्यादा यदि

0: हम जानते हैं हम बहुत क्रोध करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, तो एक एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम का शुरू करें, उनका फॉलो अप करें, या कुछ चीज़ें हो सकते हैं जैसे जो हमको ट्रिगर करते हैं एंगर, क्रोध करने पर, तो उससे थोड़ा हम अवॉइड
1: मतलब
0: करें,
1: वर्क ऑन आवरसेल्फ्स। पर बात ये आती है जब हम कहते हैं कि हमारे बीच अंदर कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति खुद एक्सेप्ट नहीं करता है ना
0: जी।
1: कि अगर किसी को कहा जाए कि एक थेरेपी ले लो या एक सेशन ले लो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति किसी मेंटली डिसऑर्डर से जूझ रहा है। ये कहीं ना कहीं हमें अपने आप को समझने में ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन आज इस बात पर एक टैबू है ना, लोग अपने आप में इन सभी कमियों को है ये मानते नहीं है, या फिर एक बच्चे में अगर कुछ ठीक नहीं है तो पेरेंट्स उसे इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
0: यस, दैट्स सो ट्रू।
1: ये एक बहुत चीज है जो हमें देखने को मिलती है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारे बच्चे में या हमारे पार्टनर में किसी चीज की कमी है और आपस में बात करके कम्युनिकेट करके या कोई एक्सटर्नल हेल्प लेकर अगर उसे हम सुधार सकते हैं तो ये हमारे रिश्ते के लिए इट्स अ पॉजिटिव थिंग।
0: और नहीं देखा और कहा तो ये ईगो पर चोट आता है, तो तभी इट कैन बी ऑन आवरसेल्फ्स और इट कैन बी फॉर द चाइल्ड।
1: एग्जैक्टली। चलिए, यहाँ पर जितने सुनने वाले और जितने हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, 4028085 पर हमें कॉल कर सकते हैं। हम मिलते हैं, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार दीदी
1: जी, आपका स्वागत है।
2: परिवार को नमस्कार, जितने को बैठे हुए हैं
1: नमस्ते।
2: आप सबको करजोड़ प्रणाम है।
1: कौन बोल रही है जी?
2: मोगू से नंदिनी नेपुल बोल रही हूँ।
1: जी नंदिनी जी, आपका स्वागत है। बताइए, क्या जोड़ना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में?
2: मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि आज के परिवार में संस्कार नहीं है बेटी
1: जी।
2: सबसे मूल मंत्र यही है, कैसे बोलते हैं, सौ के बात एगो बात, कि संस्कार नहीं था। जब संस्कार नहीं रही तो कुछ नहीं अच्छा रही। घर में बहुत डमाडोल रहेला, बड़ा आदमी के दादहो में बड़ा आदमी के ओकर सेवा भी नहीं कर, ओके उठ के प्रणाम नहीं बोला, ओकर हाल चाल भी नहीं पूछा, ये इस संस्कार नहीं बा बेटी। मैं जो कह रही हूँ, मेरे घर में मैं भी इंसान हूँ ना, मैं भी एक दादी हूँ, नानी हूँ, लेकिन जो छोटा से मैंने बताई है, हमारा बेटा है, बहू है, बेटी, दामाद, नातिन सब सूट उठ कर, हमारा बेटा का बेटी 3 बरस से मैंने उनको सिखाया, आज तलक अभी HSC कर रही है, लेकिन बिना प्रणाम बोले मुंह धोवे नहीं जाला। जैसे उतरी तो प्रणाम दादी, प्रणाम दादा, दादा नहीं हुआ, दादा रोलंत उसने तब ही संस्कार चाहला दे के बेटी
1: जी।
2: हाँ, माँ बाप, माओ बाप के आज के दुनिया में संस्कार नहीं बता, उ लोग के माँ बाप डरल नहीं दिलन जा संस्कार, समझ ला ना
1: जी।
2: काम तो सब कोई के है बेटी, काम नहीं रहल बीरो में लो औरत के तो हमने लीजिन में काम करते सब बहुत देरी से, बहुत देरी से, लेकिन काम रहल कान काटे जा, दिपायास करे जा, गाय पोसा, बकरी पोसा, मुर्गी पोसा, लेका सुता के जा पानी आने, कुआरी खोल के झोंक के देखा लेका उठल बा कि नहीं, है पहले के समय रहल बेटी, है ये बोले के बा हमरा बेटी कि संस्कार सबसे प्रथम।
1: बहुत धन्यवाद नंदिनी जी आपके विचारों के लिए। बिल्कुल, जब परिवार की हम बात करते हैं तो संस्कार उसमें जो है सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है, क्योंकि संस्कार जो है हमारे हमारे हमारे बर्ताव में झलकता है ना, हमारे उठने बैठने में। और संस्कारों की बातें करें तो ये सारी चीज़ें लोगों को लगता है ये पुरानी चीज़ें, लेकिन ये पुरानी नहीं है, ये हमारे बोलचाल में दिखता है, हमारे पहनावे में दिखता है, हमारे लोगों के सामने वाले इसे हम कैसा बर्ताव करते हैं, कितना रिस्पेक्टफुली उनसे बात करते हैं, तो ये है बेसिक संस्कार। और कहीं ना कहीं ये बच्चों में हो, या हम स्कूल कॉलेज में जाए, या कॉर्पोरेट लाइफ में, या फिर शादीशुदा जीवन में, हर एक जगह पर ये उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है
0: जी। और एक चीज माता जी ने सही कहा, सब बिजी है, उस समय भी बिजी थे
1: एग्जैक्टली,
0: लेकिन संस्कार दिया। अभी उनकी पोती या पोता जो भी ग्रैंड चिल्ड्रन उठते ही प्रणाम करते हैं, दादी ये सब, तो ये महत्वपूर्ण है जब एक्सटेंडेड फैमिली होते हैं।
1: एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ संस्कार नहीं, अपने आप में एक डिसिप्लिन भी है ना।
0: बिल्कुल
1: ना, क्योंकि डिसिप्लिन का होना लाइफ में बहुत जरूरी है।
0: हाँ,
1: इसे हम

0: संस्कार कहे डिसिप्लिन कहे दोनों ही समान ही हैं और जब एक व्यक्ति के लाइफ में संस्कार डिसिप्लिन होता है तो ऐसे व्यक्ति को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता
1: क्योंकि संस्कार से ही डिसिप्लिन आता है। जैसे महानुभाव हमारे माइथोलॉजीज में श्री राम जी कृष्ण जी जो भी ईसाई जी तो ये सब एक स्पिरिचुअल और संस्कार मिले तब जाके उनका जीवन इतने अनुशासन पूर्वक हुआ और डिसिप्लिन और गर्व के साथ हम भी गर्व के साथ कह सकते हैं। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम जहाँ पर जो कमियाँ माता पिता दे नहीं पा रहे हैं वो कमियाँ पूर्ण कर रहे हैं एक्सटेंडेड फैमिली जैसे दादी दादा चाचा चाची। फिर आता है हम बात कर रहे थे जहाँ कैसे प्रभाव आता है परिवार और बच्चों पर। एक जैसे आपने कहा एक्सेप्ट नहीं करते है ना स्वीकार नहीं करते ऐसा ही एक छात्र ओके उन्होंने रूलर को लाइक तोड़ दिया था तो टीचर से जाके कहा टीचर ने कहा ठीक है आप ये मत करो यू नो एक अनुशा करेक्शन। फिर बाद में जो पेंटल्स है ना पेंटल्स बहुत ही फ्रजाइल होते हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है ये ध्यान से सीखना चाहिए बच्चों को। तो क्या किया उस बच्चा उन्होंने ये सारा जो टिप्स ऐसे करते करते तोड़ दिया तो अंदर चला गया मतलब यू कैन नॉट यूज इट्स फॉल्टी। तो अदर फ्रेंड्स ने टीचर से कहा टीचर कह रहे हैं एक किया कोई बात नहीं सारे बाकी ठीक है। तो बच्चे ने कहा नहीं हम बोल रहे थे उनको ये मत करो हमारे सामने उन्होंने सबका बिगाड़ दिया एक एक करके। सो द टीचर देन सेड इट्स बैड। फिर अगले कुछ दिनों बाद उन्होंने एक मित्र का ये आंख ही निकालने की प्रयास की यू नो सो द लेवल ऑफ
0: अग्रेशन कह सकते हैं ना
1: इल बिहेवियर मिसबिहेवियर इज एस्केलेटिंग फ्रॉम ब्रेकिंग अ रूलर पेंटल को खराब करना और एक बच्चे का ये आंख ऐसा निकालना। तो बाद में अध्यापक ने माता पिता से बात की तो माँ आई माता से ये सब कहा फिर बच्चे भी आ गए ये दिखाया तो एक मतलब थोड़ा ये शोर
0: चेओस हो गया।
1: तो माता जी ने मतलब यदि हम माता होते आई मीन आई एम नॉट मैरिड लेकिन जो माता पिता सुन रहे हैं शायद आप क्या करते आप पूछते अच्छा ये किया एक मिनट बच्चे से पूछेंगे क्यों किया ऐसा क्या हुआ यू नो माता इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड माई सन इज नॉट लाइक दैट घर में वो ऐसा नहीं वो कभी नहीं कर सकता ये हो नहीं सकता डिनायल। तो कौन सा उदाहरण व्हाट डिड द चाइल्ड लर्न हम कुछ भी कर सकते हैं हमारी माँ हमारे साथ देगी फिर बाद में जब ये एस्केलेट होगा पता नहीं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्राइम्स यू नो थेफ्ट तो ये भी तो उसका असर माता पिता को ध्यान देना चाहिए और बड़े को भी सुनना चाहिए।
0: बिल्कुल चलिए अभी के लिए हम हमारे एक श्रोता को सुनते हैं देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो नमस्कार।
2: हेलो नमस्ते सुमित जी मैं कॉटेज से आशा जाने बोल रही हूँ।
0: नमस्ते आशा जी आपका स्वागत है कैसी है आप।
2: मैं अच्छी हूँ और आज के मेहमान को भी सादर नमन है।
1: नमस्ते।
2: हाँ जी तो देखिए ईश्वर का सबसे अनमोल उपहार जो हमें मिला है वो है परिवार और परिवार में सबसे जरूरी होता है प्यार। अब इस प्यार को इस रिश्ते को किस तरह से हम निभाएं इसके लिए सबसे जरूरी जो अहम चीज होती है वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है ये नहीं कि सिर्फ बच्चों को पेरेंट्स को समझना चाहिए या पेरेंट्स को बच्चों को समझना चाहिए बल्कि हम यानी कि हर उम्र में कोई भी उम्र के वर्ग को हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। जरा सोचिए सुबह से हम निकलते हैं काम पर जाने के लिए और शाम को जब आते हैं तो हंसता खिलता परिवार देखकर मन को कितनी शांति मिलते हैं। अब उसी घर में यदि क्लेश हो कलह हो कि मैं ये कर रही हूँ सुबह से तुम कुछ नहीं हाथ बता रही हो या बच्चे मेरे नहीं सुने अब ये छोटी छोटी बातों को अगर हम लेकर आगे बढ़ाएंगे तो परिवार में खुशहाली कभी नहीं आएगी। इसके लिए जरूरी ये है हम साथ मिलकर किचन में एक दूसरे का हाथ बताए साथ मिलकर डाइनिंग टेबल और सबसे जरूरी जो बात होती है कमरे में अकेले अकेले खाने के बजाय डाइनिंग टेबल में साथ मिलकर भोजन करने से प्यार और मधुरता और बढ़ती है। और एक बात जानना चाहती हूँ जिस तरह से मैं सुन रही आप कह रही हैं कि हमें बच्चों पर किस तरह से ध्यान देना चाहिए उसी प्रकार जब माता पिता थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम बच्चों को

0: को समझना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए अब आप बूढ़े हो गए हो तो आपके आप हमारे बातों को क्या समझेंगे, हम तो इस उम्र के हैं, तो ये नहीं, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए हम आज जो कुछ है उनके जैसे उनके आशीर्वाद से है, तो आज उनको हमारी जरूरत है तो हमें उनकी केयर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके दिमाग की तरह सोचकर उन्हें अपने पूरा पूरा समय देना चाहिए।
1: वेरी ट्रू।
2: धन्यवाद आशा जी आपके इन विचारों के लिए। बिल्कुल सही कहा कि जितना हम जो है परिवार की बात करते तो जितना ध्यान हम बच्चों पर देते हैं उतना ही जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चों का कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता के प्रति भी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे, क्योंकि आज जो भी हम है कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से है, है ना। तो हमारा भी समय आता है जब हम उनको ध्यान दे, उनको समय दे, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो चलिए यहाँ पर बढ़ेंगे हम अगले। आजकल एक और चीज़ हमें बहुत देखने को मिलती है परिवारों में कि जैसे कि हम अगर आम एक कपल की बात करें या परिवार के अन्य बड़े सदस्यों की बात करें, वो घर नहीं लौटना चाहते हैं ना। मतलब कि ऐसा लगता है कि घर पर आएंगे तो अनबन शुरू हो जाएगी या डिफरेंसेस ना
1: प्लेजेंट नहीं है घर लौट।
2: मतलब कि एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, चिड़चिड़ापन, इसके काफी फैक्टर्स है। काफी फैक्टर्स है, तो इससे हम किस तरह से मतलब कि टैकल कर सकते हैं?
1: ये कारण नहीं होना चाहिए कि हम घर ही वापस ना लौटे।
2: हमारे
1: मन नहीं है
2: कब काम खत्म होगा तो कब हम घर जाएंगे, क्योंकि घर हमारे लिए एक सेफ स्पेस है। घर जाना, घर पर रहना, पर कुछ लोग होते हैं जो घर पर जाने नहीं, एक बार निकले तो घर जाने को नहीं देखते क्योंकि परिवार से भागते हैं।
1: जो खुशहाल हैप्पी फैमिली सेफ प्लेस इतना अनप्लेजेंट कैसे हो गया कि अब लोग अपने ही घर में वापस जाना
2: नहीं पसंद करते।
1: मन नहीं है लेकिन दूसरों के घर में जाना शायद पसंद है, ये भी है, यू नो, दे चूज अदर डायरेक्शंस। तो
2: या फिर कोई अलग, जैसे कि कहीं बाहर समय बिताए दोस्तों के साथ,
1: देर से लौटे जब सब सो गए होंगे, तो शायद घर में प्रॉब्लम नहीं है, घर के लोगों में कुछ है, क्योंकि उससे वापस आमना सामना करना पड़ेगा
2: या विचारों का मतभेद।
1: बिल्कुल। क्या बात करेंगे, सुनसान है, सन्नाटा है, पता नहीं कैसा है। सो पहले आइडेंटिफाई करें कि परेशानी क्या है,
2: exactly.
1: बात करें। एक व्यक्ति जो पहले से ही ऑफिस पहुंच जाता है, बाद में देर से लौटता है, लास्ट पर्सन टू गो बैक, और जब गाड़ी चलाता है जहां जहां ट्रैफिक हो वो उसमें घुस जाता है
2: कि ज्यादा
1: देर से घर लौटे। मतलब आई फाइंड इट। या एक व्यक्ति काम के बाद बस गाड़ी चलाता है ऑन द मोटरवे, ये मॉरिशस में है, घर जाने को नहीं, मन नहीं है, तो हम सोचे तो ऐसे पैसा है फ्यूल के लिए।
2: ऐसे केसेस जब आपके पास आते हैं तो आप उन्हें किस तरह की सलाह देते हैं?
1: तो पहले पूछना है कि परेशानी क्या है, ऐसी क्या अनप्लेजेंट चीज है घर पर कि आप जाना ही नहीं चाहते। उनको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के बाद शायद एक चीज हो, ये एक स्थिति हो या एक व्यक्ति ही क्यों ना हो, ये भी होता है, ऑल काइंड्स ऑफ परेशानी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब ये व्यक्ति से हम पूछेंगे तब जाके एक एक करके, यदि एक व्यक्ति है तो उससे अच्छा संबंध नहीं हो पा रहा है, इट कैन बी इन द कपल, इट कैन बी ग्रैंड पेरेंट्स जैसे माता जी ने कहा, इट कैन बी चाचा चाची या कजिन, पता नहीं, या पड़ोसी भी जो बहुत परेशान करते हैं, तो उसके आधार पर उनसे उनका ये सलाह कैसे दे, हाउ टू हेल्प देम। पहले व्यक्ति से बात करें, यदि कुछ हो नहीं तो व्यक्ति आ जाए फॉर काउंसलिंग, थेरेपी, तो दोनों को फिर सुलझाएंगे। सुलझने के बाद तब प्लेजेंट माहौल बन जाता है, यदि कुछ चीज है तो उसका भी समाधान होता है। यदि पड़ोसी है देन वी कैन गो टू द गवर्नमेंट, क्योंकि पड़ोसी का लेवल, मतलब पड़ोसी को नहीं बोल सकते ना आप थेरेपी पर जाए, ये सही नहीं रहेगा, लेकिन वी कैन गो टू हायर पीपल, जो पड़ोसी शायद हम उनके माता पिता को जानते हैं, अलग पड़ोसी का साथ मिले, कोई झगड़ा नहीं, नो लड़ाई, लेकिन आप भी अच्छे से रहे
2: आपस में, बात को भी जीत करके अगर हम सुलझा सकते हैं मसले को।
1: हाँ, ये फिर आता है जो मन की स्थिति ही, घर पर सब ठीक है शायद अपने में ही कुछ प्रॉब्लम है कि हम घर नहीं जाना चाहिए, ये भी होता है
2: कभी कभार। ऐसा होता है कि शायद वो प्रॉब्लम्स होते नहीं है
1: exactly.
2: लेकिन हम मन में सोच रहे हैं
1: जी,
2: शायद वो व्यक्ति बुरा नहीं है हाँ. लेकिन हम सोच रहे हैं
1: yes.
2: या फिर ऐसा लगता है कि वो हमें गलत समझ रहा है लेकिन वो हमें गलत नहीं समझ रहा है। तो कभी कभार हम अपने आप में ही उलझ जाते हैं
1: बिल्कुल,
2: और ये हमारे रिश्ते खराब होने के एक फैक्टर हो सकता है
1: बहुत बड़ा, क्योंकि हम अपने ही मन में जो भी बनाया हम बिगड़ रहे हैं, वहम में जीते हैं, इल्यूजन। तो फिर आता है उनको ये ध्यान पर आना चाहिए कि हमने ही ये क्रिएट किया। फिर यदि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उस व्यक्ति से ये दूर करें, यदि ये स्वयं से ना हो सो ब्रिंग द पर्सन साथ में, इट्स कॉल्ड फैमिली थेरेपी, फैमिली काउंसलिंग या कपल काउंसलिंग, तब जाके ये दूर होता है। क्योंकि यदि आप घर वापस नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, यू नो, भटकना बहुत ही सरल है, इट्स इजी टू डिस्ट्रैक्ट एंड गो अवे।
2: आप भाग रहे हैं ना अपनी समस्याओं से,
1: फेस
2: उसे सुलझाने का की कोशिश नहीं कर रहे, और कब तक भागोगे?
1: बिल्कुल,
2: आखिर में तो आपको जाना वही है।
1: एग्जैक्टली, तो ये डर शायद कि कैसे करे, चैलेंजेस का सामना कैसे करे, उनका सुलझाव हम कहाँ पा सकते हैं। अभी यदि बार बार कुछ परेशानी आएंगे जैसे आपने कहा, तो टोकेंगे, ताना मारेंगे, तो अपने आप में ही वो अंदर बंद करके रखेंगे सारे चीजें। देन जब एक दिन आएगा वो एक्सप्लोजन की तरह होता है। एक्सप्लोजन मतलब जो एक स्प्राइट या कोक का बॉटल लेंगे ना, उनको शेक करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर अचानक से खुलेंगे तो पूरा ये फैल जाए।
2: होता है क्योंकि बहुत से व्यक्ति जब मन में चीजों को दबा कर रखते हैं फिर जब उसे निकालते हैं तब वो इस तरह से रिश्ते खराब होते हैं, तब फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाता
1: है। तो स्वयं भी एक मानसिक इलनेस पर पड़ जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल होगा, डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी, फिर बाद में पता नहीं सुसाइडल थॉट्स, और अंतिम में ये कदम भी उठाते हैं। तो इसीलिए परिवार, और इट्स नॉट वन पर्सन टू बी ब्लेम्ड, हर समय एक ही व्यक्ति को हम दोष देंगे ये सही नहीं है, दोनों हाथ की आवश्यकता होती है ताली बजाने में। तो किसी ना किसी को एक समझौता करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट, है ना, ताकि यदि बच्चे हैं या कपल में ही ये खुशहाली जिंदगी बिता सकते हैं।
2: हाँ। हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, और ये टॉपिक अपने आप में इतना ये है कि शायद और एक दो एपिसोड हम करेंगे तभी भी शायद इस पर जो है बातें खत्म नहीं होंगी। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगी जाने से पहले, कोई संदेश, क्योंकि 15 तारीख को हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने वाले हैं। पिछले रविवार को विश्व भर में मदर्स डे मनाया गया, मॉरिशस में तो मई महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। अब तो माता पिता, भाई बहन, बच्चे सभी परिवार का हिस्सा है, तो कोई मैसेज, कोई संदेश आप जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, जितने श्रोता हमें सुन रहे हैं, उनको देना चाहेंगे?
1: अवश्य, आज से लेकर शायद बहुत सालों बाद, है ना, हजार शायद, ओके, हम और आप नहीं रहेंगे
2: जी।
1: तो एक दिन एक म्यूजियम में जाएगा, इतिहास के पन्नों में लिखा था कि परिवार ऐसा होता है जैसे एक्सटिंक ना हो, यू नो, कि म्यूजियम में जाए, क्योंकि नाउ वी कैन फाइंड लेडीज पेरेंट बन रहे हैं, जेंटलमैन पेरेंट बन रहे हैं,
2: सेम जेंडर के लोग,
1: यस, सेम जेंडर, किसी का प्रेफरेंस है कोई बात नहीं, लेकिन ये द आइडियल इज फादर मदर एंड चाइल्ड, जब तब जाके। तो इसलिए हमारा एक प्रोजेक्ट है और एक प्रोग्राम है, इसका होप कहते हैं। होप ऐसा होता है, होप, ऑनर आवर पेरेंट्स एवरी डे, यस। तो यदि सब देख रहे हैं जो बोलते हैं सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स इन वट एवर यू डू इन लाइफ, और ऐसा ना हो कि कभी उनकी आंखों में आंसू ना पड़े, तो ये ऑनर आवर पेरेंट्स एवरी डे बहुत ही सुंदर, ताकि एक विजुअल है, जब बच्चे देखने से ही ज्यादा सीखते हैं। सो टू सी ये मॉन्यूमेंट है, इट्स यू।
3: RM3 रेडियो। RM3 रेडियो।

0: शक्यो टाइम इज ऑलरेडी 4 पीएम आई सुनते हैं समाचार गीता के साथ नमस्कार
1: नमस्कार गिनीशा सभी को हमारा नमस्कार स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकनगुनिया डेंगू और लेप्टोस्पाइरोसिस जैसी संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए पहले ही संचालन योजनाएं तैयार कर ली हैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिज ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता

0: के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के दौरान ये बात कही। अनिल बिचू ने पुष्टि किए गए मामलों के प्रबंधन और रोकथाम के लिए विभिन्न स्तरों पर उठाए गए कदमों की जानकारी दी। लेप्टोस्पायरोसिस के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जिन छह लोगों की मृत्यु हुई है वे इस बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित थे। और हांटा वायरस पर पूछे गए एक अतिरिक्त प्रश्न के जवाब में मंत्री अनिल बेचू ने कहा कि मॉरिशस के पास इससे निपटने के लिए एक तैयारी योजना मौजूद है। एक नई अफ्रीका अधिक मजबूत, अधिक एकजुट और अधिक लचीली, ये संदेश आज नैरोबी में आयोजित अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन के आधिकारिक उद्घाटन समारोह में शामिल लगभग 40 अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों और सरकारी नेताओं ने दुनिया को दिया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम का सम्मेलन कक्ष में पहुंचने पर केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने स्वागत किया। राष्ट्रपति रूटो का भाषण, जो अफ्रीकी महाद्वीप के आत्मवित्त पोषण पर केंद्रित था, विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाला रहा। और विदेशक खबरों में यूके में इन दिनों 70 से ज़्यादा लेबर सदस्यों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे से इस्तीफा देने की अपील की है। ये अपील तब की गई जब सत्ताधारी पार्टी को स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे सरकार के भीतर बढ़ता तनाव संकट और गहरा गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.

0: के सितारे।
1: चलिए दोस्तों, प्यार भरा सलाम हमारे सभी लिसनर्स को, नमस्कार आदाब हमारे सभी श्रोताओं का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इट्स टाइम रेडियो मनोरंजन पर लेकर आई आपके लिए ये पसंदीदा प्रोग्राम आपका, जिसका नाम है आपके सितारे। मैं हूं परी आपके साथ, और आज का ये जो म्यूजिकल सफ़र है इसमें हम सलाम देने वाले हैं एक ऐसे कंपोजर ड्यूओ को जिन्होंने कुछ बहुत ही लाजवाब कंपोजिशंस दिए टू बॉलीवुड। सो आज के इस दो घंटे के सफ़र में सेलिब्रेट करेंगे बॉलीवुड के लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर्स, द मैजिकल ड्यूओ ऑफ कल्याण जी आनंद जी। उनके गाने सिर्फ मेलोडीज नहीं थे बल्कि इमोशंस थे, मोहब्बत थी, दोस्ती थी और ज़िंदगी के हर रंग को एक सुरीला एहसास देते थे। सो उनके इन्हीं गानों को आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन। साथ है मेरा यानी कि परी का टिल 6 PM दो घंटों का ये सफ़र आपके लिए खास और स्पेशल। So this one goes out for all the fans of Kalyan ji, Anand ji. साथ ही हमारे जितने भी लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, फ्रॉम वाकवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर गोविंद रघुनंदन। दिस वन गोज आउट फॉर यू, गोज आउट फॉर योर ब्यूटीफुल वाइफ वेदा, एंड इक्वली गोज आउट हमारे सभी लिसनर्स के नाम। साथ देने के लिए शुक्रिया। कुछ प्यारे गाने आपके लिए, एंजॉय दिस वन।

0: RM3 Radio.
1: तो जी हाँ दोस्तों, मेमोरीज को रिवाइंड करने के लिए हो जाए ये तैयार, क्योंकि अगले दो घंटे होने वाले हैं पूरे गोल्डन एरा के नाम। कल्याण जी, आनंद जी और उनके ब्यूटीफुल कंपोजिशंस लेकर आए हैं हमारे प्रोग्राम आपके सितारे में। मैं हूँ परी आपके साथ शाम के 6 बजे तक। अभी के लिए वंस अगेन किशोर दा की आवाज, फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर, अ ब्यूटीफुल ट्रैक हमारे सभी लिसनर्स के नाम।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. सवाल लेकर आए हैं कल्याण जी आनंद जी के कुछ सुपर डुपर हिट्स आपके लिए एंड दैट्स फ्रॉम द फिल्म जहां पर अमिताभ बच्चन को मिला खिताब ऑफ एंग्री यंग मैन जंजीर फिल्म का ये गाना आवाज़ी लता मंगेशकर रफ़ी साहब की और इस वक्त आप भी साथ दे रहे हैं तो मैसेजेस डेडिकेशंस 5250620025250600 पर आपका इंतज़ार
1: दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए

0: आपके सितारे।
1: तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कल्याण जी आनंद जी और उनके कुछ ब्यूटीफुल कंपोजिशंस। दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी ने बॉलीवुड को दिए काउंटलेस एवरग्रीन क्लासिक्स। गुजराती फैमिली से बिलोंग करने वाले ये भाइयों ने स्ट्रगल से शुरू किया अपना म्यूजिकल सफ़र और फिर बन गए हिंदी सिनेमा के मेलेडी किंग्स। उनकी कंपोजिशन में इंडियन क्लासिकल का ग्रेस भी था और मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा का मैजिक भी, और सबसे खास बात, हर गाना सीधा दिल तक पहुँचता था। सो उनके कंपोजिशंस आज लेकर आए हैं के लिए और हमारे जो लिसनर्स साथ दे रहे हैं हमारे इस रेडियो स्टेशन पर। सो यहाँ पर कहती हैं दैट एंजॉयिंग द प्रोग्राम। सुनीता जी दागोचे से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी बिहारी परिवार के नाम डेडिकेट कर रही हैं अगला गाना, और साथ ही यहाँ पर विजया जी आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सो दैट्स रियली स्वीट, साथ देती हैं हमारा ऑन MBC रेडियोज। और बहुत ही खास बात है, हमारे जो लिसनर्स हैं 24/7 हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो जैसे हमने कहा कि आज का ये जो सेलिब्रेशन है वो है दो भाइयों के नाम, कल्याण जी आनंद जी, जिन्होंने दिए बॉलीवुड को कुछ एवरग्रीन क्लासिक्स। अभी के लिए ये गाना फ्रॉम द फिल्म त्रिदेव। सभी हमारे लिसनर्स के नाम, साल था 1989 एंड 2026 आज भी गाना उतना ही प्यारा, उतना ही लाजवाब। सभी लिसनर्स जो दे रहे हैं हमारा साथ, ये गाना आपके नाम।

0: RM3 Radio. Radio.
1: और जी हाँ दोस्तों, अगर मुकेश जी की आवाज़ में दर्द महसूस होता है तो उस दर्द को सुर देने का काम कई बार कल्याण जी आनंद जी ने किया। कभी कभी सफ़र डॉन, मुकद्दर का सिकंदर या फिर पारस, उनका म्यूज़िक इमोशंस को ज़िंदा कर देता था और गाना जो भी था बस हमेशा के लिए बन गया एवरग्रीन एंड सुपर डुपर हिट। सो ये गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे कल्याण जी आनंद जी के सभी फैंस के नाम एंड फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो मनोरंजन, स्पेशल ट्रैक आप सभी के लिए।

और जी हाँ दोस्तों, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हम एक ऐसे डुओ को जिसने हमें दिए कुछ बहुत ही प्यारे गीत. एंड ये है पूरब और पश्चिम फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा गाना. जब भी इस गाने को सुनते हैं आंखें थोड़ी सी नम जरूर होती है, क्योंकि जो इमोशंस हैं वो सीधा दिल तक पहुँचते हैं. सो महेंद्र कपूर की आवाज़ और कल्याण जी आनंद जी का म्यूज़िक, ये गाना आप सभी के लिए.

तो चलिए दोस्तों, पूरा पश्चिम फिल्म का ये गाना। और क्या आपको पता है कल्याण जी भाई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कलवलन बजाने के लिए बहुत फेमस थे और बॉलीवुड में यूनिक साउंड्स इंट्रोड्यूस करने वाले पायनियर्स में से एक माने जाते थे। इस एक्सपेरिमेंटेशन ने उनके म्यूजिक को टाइमलेस बना दिया और आज उसी टाइमलेस जोड़ी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ परी आपके साथ, लेकर आई हूँ प्रोग्राम आपके सितारे। आज के हमारे सितारे कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, द फेमस म्यूजिक कंपोजर्स ऑफ बॉलीवुड और उन्हीं के कुछ फेमस सॉन्ग्स आपके नाम। अभी के लिए हैप्पी सॉन्ग किशोर कुमार की आवाज, एक खूबसूरत सा गीत इसी गाने के साथ बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर।

listening to RM3 Radio Manoranjan. टाइम चेक, शाम के ठीक 5 बजे हैं. जुड़े हुए हैं आप RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ. वक्त हो चला है प्रोग्राम आपके सितारे का, 4 से लेकर 6 बजे तक कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके नाम, सेलिब्रेटिंग द वंडरफुल जोड़ी ऑफ कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, द वेरी फेमस कंपोजर ड्यूओ ऑफ बॉलीवुड. मैं हूं परी आपके

सो जी हाँ दोस्तों, प्यार इश्क मोहब्बत और कल्याण जी आनंद जी के गाने, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। उनकी मेलोडीज में एक सिंप्लिसिटी थी जो डायरेक्टली दिल को छू जाती थी। आज भी लॉन्ग ड्राइव्स हो या फिर रेनी इवनिंग्स, उनके गाने एकदम परफेक्ट लगते हैं। सो ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आज आपके नाम, एंड एक और क्लासिक आपके लिए फ्रॉम द फिल्म कलाकार, कंपोजिशन कल्याण जी आनंद जी की, आवाज किशोर कुमार की। चलिए दोस्तों, सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं सेलिब्रेटिंग कल्याण जी आनंद जी और उनका म्यूजिक, मैं हूं परी आपके साथ, लेकर आई हूं प्रोग्राम आपके सितारे, राइट हियर ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन।

0: खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, एल मुकेश और कंचन की आवाजें ये गाना स्पेशली मिस्टर गोविंद रघुनंदन आपके नाम दे रहे हैं साथ वाकवा से।
1: आपके सितारे।
0: और जी हाँ, यहाँ सरिता जी साथ दे रही हैं, आप भी काट्रबोन से खाना बनाते हुए शो को एंजॉय कर रही हैं और सिलेक्शन को पसंद कर रही हैं। तो बस कल्याण जी, आनंद जी और उनके कुछ ब्यूटीफुल कंपोजिशंस आपके नाम। दोस्तों, म्यूजिक की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या होती है? कि ये हमें वक्त में पीछे लेकर जाता है, किसी अपने की याद दिलाता है, किसी पुरानी मुस्कान से फिर मिला देता है। और कल्याण जी, आनंद जी के कंपोजिशंस एग्जैक्टली वही करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ गोल्डन एरा की बात कर रहे हैं, और 70s 80s की बात हो और अमिताभ बच्चन का नाम ना आए ये तो इम्पॉसिबल है। और बिग बी के एंग्री यंग मैन एरा को आइकॉनिक बनाया कल्याण जी आनंद जी के पावरफुल म्यूजिक ने। डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, हर साउंडट्रैक ब्लॉकबस्टर। तो उसी ब्लॉकबस्टर लिस्ट में एक और गाना, किशोरदा की आवाज़ और सभी हमारे लिसनर्स ये गाना आपके नाम, एंजॉय दिस वन।

0: RM3 Radio.
1: और अभी के लिए संध्या जी साथ दे रही हैं आप हमारा और थैंक यू सो मच इतने प्यार से इन प्यारे गानों को एंजॉय करने के लिए. साथ ही कविता जी साथ दे रही हैं मोचीदास से और प्रोग्राम को पसंद करने के लिए शुक्रिया. अभी के लिए ये प्यारा गाना हम आपके नाम और सभी सुनने वालों के नाम चला रहे हैं. रफी साहब आशा भोसले की आवाजें एंड सेलिब्रेटिंग द आइकॉनिक ड्यो कल्याण जी आनंद जी उनके कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑन रेडियो मनोरंजन.

0: listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: Tu bhi aaja ke aa gayi rut.

0: के सितारे।
1: वेल सो आवाजें मनहर उदास अलका याग्निक पिक्चराइज्ड ऑन जैकी श्रॉफ एंड द वे गॉर्जियस संगीता बिजलानी फिल्म त्रिदेव एंड म्यूजिक वन एंड ओनली कल्याण जी आनंद जी। चलिए दोस्तों इट्स 5:42 और दो घंटों का ये सफर धीरे धीरे फिनाले की तरफ बढ़ रहा है लेकिन मेलोडीज का ये जो जादू है ये खत्म नहीं होता क्योंकि आपके लिए कुछ ऐसे गाने लेकर आए हैं जो हमेशा से रहे हैं वेरी पॉपुलर और कल्याण जी आनंद जी के कुछ बहुत ही यादगार गाने आपके नाम। कल्याण जी आनंद जी ने सिर्फ गाने नहीं बनाए, उन्होंने जनरेशन को मेमोरीज दी है और उन्हीं मेमोरीज में हम आज भी जी रहे हैं। अभी के लिए अनुराधा पौडवाल किशोर कुमार की आवाजें वंस अगेन फ्रॉम द फिल्म कलाकार। खोए खोए रहे तेरी यादों में इसी गाने को डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर ऑल द फैंस ऑफ कल्याण जी आनंद जी, फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो मनोरंजन। मैं हूं परी आपके साथ शाम के 6 बजे तक कुछ खूबसूरत गीतों के साथ आपका मनोरंजन आपका एंटरटेनमेंट। चलिए एंजॉय दिस वन।

0: के सितारे।
1: और चलिए दोस्तों, इसी ब्यूटीफुल नोट के साथ आज का हमारा ये रेट्रो म्यूजिकल सफर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग दीज लवली टू आवर्स मेरे साथ और विद द टाइमलेस म्यूजिक ऑफ कल्याण जी आनंद जी। मैं हूं परी और आपसे इजाजत लेती हूं। मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और यादों को हमेशा दिल के प्लेलिस्ट में सजाते रखिए। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए तो वक्त आ चला है कि मुझे आपसे लेनी है इजाजत और ऐसे ही प्यारे गाने आपके लिए चलते रहेंगे ऑन रेडियो मनोरंजन। सो बस कीप लिसनिंग टू गुड म्यूजिक ऑलवेज हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन पर। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अभी के लिए जो अगला गाना है वो भी है एक प्यारा सा गाना, एक हसीना दो दीवाने, कल्याण जी आनंद जी का एक ब्यूटिफुल टाइमलेस कंपोजिशन। और इसी गाने के साथ मैं परी लूंगी आपसे अलविदा। हैव अ ग्रेट इवनिंग और थोड़ी ही देर में सुन पाएंगे समाचार बुलेटिन। कहीं मत जाइए, स्टे कनेक्टेड रेडियो मनोरंजन के साथ।

पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रंगनाथन पदयाची द्वारा फेसबुक पर एक पोस्ट के बाद बैंक ऑफ मॉरिशस ने आज अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय बैंक स्पष्ट करता है कि 2025 में न तो 83 बिलियन रुपए की रकम के नोट की छपाई हुई है और न ही सरकार के मध्य इतने पैसे का ट्रांसफर हुआ है। एक नया अफ्रीका, ज्यादा मजबूत, ज्यादा एकजुट और ज्यादा कारगर, ये संदेश आज नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन समारोह में एकत्रित लगभग 40 राष्ट्र और सरकारी नेताओं द्वारा विश्व को दिया गया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम की अनुपस्थिति में आर्यन नवोमारी अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल रही हैं। राष्ट्रीय सभा में आज उन्होंने सदन के प्रमुख के रूप में कार्यों की अध्यक्षता संभाली। कई बार अपनी जान खतरे में डालकर स्वास्थ्य कर्मचारी मरीजों की सेवा और उनका इलाज करते हैं। आज 12 मई को मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस मौका है उन फ्रंटलाइनर्स का आभार प्रकट करने का। इस संदर्भ में आज कई गतिविधियां आयोजित की गई और इस क्षेत्र के कर्मचारियों की

0: सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। और विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा शांति प्रस्ताव ठुकराए जाने को मूर्खता कहा। उन्होंने कहा कि अब वे इस कमजोर युद्ध विराम पर और समय व्यर्थ नहीं करेंगे। और अब पेश है समाचार विस्तार से। पूर्व वित्त मंत्री गंगानंदन पदयाची द्वारा अपनी फेसबुक पेज पर किए गए एक पोस्ट के बाद बैंक ऑफ मॉरिशस ने आज सुबह प्रतिक्रिया दी। एक बयान में बैंक ने कहा कि उसने सोशल मीडिया पोस्टों और समाचार लेखों में 2025 में कथित तौर पर 83 बिलियन रुपए छापे जाने संबंधी फैलाई गई झूठी खबरों की जानकारी ली है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने स्पष्ट किया है कि 2025 में ना तो कोई मुद्रा छापी गई और ना ही सरकार को कोई धनराशि हस्तांतरित की गई है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने यह भी कहा कि लेन देन से संबंधित विवरण उसकी वेबसाइट पर प्रकाशित बुलेटिन में देखे जा सकते हैं। एक नई अफ्रीका अधिक मजबूत, अधिक एकजुट और अधिक लचीली, यही संदेश आज नैरोबी में आयोजित अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन के आधिकारिक उद्घाटन समारोह में शामिल लगभग 40 अफ्रीकी राष्ट्र और सरकारी प्रमुखों ने दुनिया को दिया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम का सम्मेलन कक्ष में पहुंचने पर केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने स्वागत किया। राष्ट्रपति रूटो का भाषण, जो अफ्रीकी महाद्वीप के आत्मवित्त पोषण पर केंद्रित था, विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाला रहा। और प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम विदेश यात्रा पर हैं और उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अगियान नवामागी अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल रही हैं। राष्ट्रीय सभा में आज उन्होंने सदन के प्रमुख के रूप में कार्यों की अध्यक्षता संभाली। पीएमक्यूटी सत्र के आखिर में उन्होंने कहा कि आज का दिन उनके लिए बिजनेस आज यूजुअल जैसा रहा। ज्यादा जानकारी करुणा लालू के साथ।
1: मंगलवार को 11:20 पर मुस्कुराते हुए फाइलें हाथ में लिए अंतरिम प्रधानमंत्री ने संसद भवन में प्रवेश किया।
2: Comment allez-vous? Bien, merci. Je suis sereine.
1: अगियान नवामागी के लिए ये बेहद प्रतीकात्मक दिन शांति के तहत बढ़ाया गया। फ्रंट बेंच में बैठकर उन्होंने दिन की संसदीय कार्यवाही की अध्यक्षता की।
2: PMQT members.
1: सांसदों के सामने उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित प्रश्नों के जवाब दिए, जो राष्ट्रीय महत्व के कई समसामयिक मुद्दों से संबंधित थे।
3: It's a great honor and privilege to ask the first BQ B631 of this PMQT to the first female DPM and acting Prime Minister of our Republic, B631.
2: Thank you. Third member for Port Louis North and Mont Ailong.
4: Thank you, Madam Speaker. Since this will be my first speaker address to the DPM, please allow me to address my sincere congratulations to Honorable Nawamagie for her promotion.
1: PMQT के अंत में उन्होंने संभव को business as usual बताया।
2: Business as usual. C'est une responsabilité que vous pouvez assumer selon mes possibilités et mes moyens.
1: अगियान नवामागी अपने मंत्रालय से जुड़े प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
2: On connaît encore trois questions là, donc questions posées par les parlementaires pour mon ministère donc matin.
1: PMQT के बाद कई सांसदों ने उनसे मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। ये संसद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में उनके पहले अनुभव के बाद समर्थन का एक संकेत माना गया।
0: अगियान नवामागी ने आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान 6 सवालों के जवाब दिए। ये सवाल ड्रग की जब्ती, रोड्रिक्स के मौसम संबंधी आंकड़ों और सड़क सुरक्षा से जुड़े थे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार सड़क पर खतरनाक व्यवहारों के खिलाफ उपायों को और मजबूत कर रही है। एक बार फिर करुणा लालू को सुनते हैं।
1: प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान पहला प्रश्न रोडवेक्स के लिए मौसम और जलवायु संबंधी डेटा की उपलब्धता पर आधारित रहा। अगियान नवामागी ने रोडवेक्स की जनता को सूचित करने के लिए पहले से मौजूद

0: व्यवस्था का उल्लेख किया। गंभीर मौसम परिस्थितियों के लिए एक प्रोटोकॉल भी पाया जाता है।
1: Early warning bulletins related to severe weather conditions such as heavy torrential rainfall, strong winds, heavy swells, tropical cyclones and tsunamis are issued by the MMS for Rodrigues when the island is exposed to such risks.
0: 1 जनवरी 2026 से 7 मई तक सड़क दुर्घटनाओं में 51 लोगों की मौत हुई है। बिना इरादे की हत्या के 37 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें एक चालक भी शामिल हैं जो नशीले पदार्थों के प्रभाव में ड्राइविंग के लिए वर्तमान में जेल में बंद हैं।
1: It has been decided last week to amend the penalty point system by increasing from 3 to 6 points to 5 to 10 points for those using telephone while driving.
0: अंतरिम प्रधानमंत्री ने 23 मार्च को हवाई अड्डे पर 16 किलो कैनाबिस और कैनाबिस रेजिन की जब्ती के बारे में भी जानकारी दी। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक फ्रांसीसी नागरिक और 2 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। पुलिस क्वार्टर्स के संबंध में 608 आवासों में से 545 में लोग रह रहे हैं। अंतरिम प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नए पुलिस क्वार्टर्स के निर्माण की कोई योजना फिलहाल नहीं है।
2: स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकुनगुनिया, डेंगू और लेप्टोस्पायरोसिस जैसी संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए पहले ही संचालन योजनाएं तैयार कर ली हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के दौरान ये बयान दिया। मंत्री अनिल बेचू ने पुष्टि किए गए मामलों के प्रबंधन और रोकथाम के लिए विभिन्न स्तरों पर उठाए गए कदमों की जानकारी दी। लेप्टोस्पायरोसिस के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जिन 6 लोगों की मृत्यु हुई वे इस बीमारी के गंभीर रूप से पीड़ित थे। और हंटा वायरस पर पूछे गए एक अतिरिक्त प्रश्न के जवाब में मंत्री अनिल बेचू ने कहा कि मॉरिशस के पास इससे निपटने के लिए एक तैयारी योजना मौजूद है। आस्था गोबिंद चितामन को सुनते हैं।
3: स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने देश में फैल रही संक्रामक बीमारियों के मामलों पर जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 से अब तक चिकुनगुनिया के 2816 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 102 मामले अभी भी सक्रिय हैं। डेंगू का एक मामला सामने आया, 5 इम्पोर्टेड मामले रहे, सब मरीज ठीक हो गए हैं। लेप्टोस्पायरोसिस के 21 मामले सामने आए, 6 मरीजों की मौत हुई। सभी 6 मरीजों को पहले से स्वास्थ्य परेशानियां थी। एमपॉक्स के 2 मामले सामने आए, 1 स्थानीय और 1 विदेशी, दोनों व्यक्ति मारागास्कर से मॉरिशस लौटे थे। दोनों का स्वास्थ्य ठीक है, उनके किसी भी करीबी व्यक्ति में इन्फेक्शन नहीं पाया गया।
4: Both have recovered. Their immediate contacts have been followed up.
3: स्वास्थ्य मंत्री ने इन बीमारियों से निपटने के लिए मंत्रालय की राष्ट्रीय रणनीति पर भी जानकारी दी।
4: Our strategy includes enhanced surveillance of suspected and confirmed cases, rapid reporting from hospital clinics and laboratories, early clinical recognition by doctors and nurses, immediate treatment protocols, audit of deaths and severe cases to identify preventable factors, strengthening of laboratory diagnosis including timely testing, rodent control, environmental sanitation in affected areas.
3: अनिल बेचू ने कहा कि सभी इलाकाई अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के अलग इलाज और देखभाल की व्यवस्था मौजूद है। उन्होंने इन बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में नागरिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। इस संसदीय सत्र के दौरान विपक्ष नेता जुली जोंगकॉ ने कई अतिरिक्त प्रश्न भी किए।
5: What specific factors are contributing to that high rate of death?
3: स्वास्थ्य मंत्री ने मॉरिशस और रीयूनियन टापू में दर्ज लेप्टोस्पायरोसिस के मामलों की तुलना भी की। उन्होंने कहा कि मॉरिशस में इस बीमारी का अधिक गंभीर रूप फैल रहा है और मृत्यु दर पर अन्य कई कारण भी असर डालते हैं।
4: There may be differences in comorbidities. Mauritius has a high burden of diabetes compared to Réunion Island. chronic kidney disease, cardiovascular disease, and obesity. These conditions may worsen outcomes in severe infectious diseases, including
3: the

0: मंत्री अनिल बेचू ने डेंगी, चिकुनगुनिया और एमपॉक्स से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा तैयार योजनाओं की भी जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि चिकुनगुनिया और डेंगी के मामलों में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्यूमिगेशन के लिए रासायनिक उत्पादों के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता, क्योंकि मच्छरों में अब इन दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है।
1: Has put a preparedness plan particularly at borders so that they are properly screened to avoid having any cases in Mauritius.
2: My ministry is maintaining vigilance through surveillance, clinical awareness, coordination with public health and environment services. And we are in contact with the international organization WHO and COI also. They are trying to give us all type of help. And in case of any case, if you come, is it a doubt? Then of course we have got the National Institute for Communicable Disease, a laboratory in South Africa, and we passed there in Madagascar. We have got contact with them. We'll be going to send the urine for inspection and all.
3: और जैसा कि हमने कहा था, एक नया अफ्रीका ज्यादा मजबूत, ज्यादा एकजुट और ज्यादा कारगर, ये संदेश आज नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन समारोह में एकत्रित लगभग 40 राष्ट्र और सरकारी नेताओं द्वारा विश्व को दिया गया। ज्यादा जानकारी एक बार फिर आस्था गोविंद चितामन के साथ।
0: अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 का आधिकारिक उद्घाटन मंगलवार सुबह नैरोबी के केन्याटा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुआ। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है नवाचार और विकास के लिए एक मजबूत अफ्रीका। इस बड़े सम्मेलन में लगभग 40 देशों के राष्ट्रपति और सरकार के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी शामिल हैं। सम्मेलन स्थल पर पहुंचने पर केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम का स्वागत किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों और राष्ट्रसंघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। अपने उद्घाटन संबोधन में राष्ट्रपति विलियम रूटो ने अफ्रीकी देशों के बीच अधिक एकजुटता की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि अफ्रीका आर्थिक और जलवायु भू राजनीतिक चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सके।
1: The times before us demand stronger cooperation, renewed multilateralism and partnerships grounded not on hierarchy but in sovereign equality, mutual respect and shared responsibility. Enduring partnerships must not be built on dependency but on sovereign equality, not on aid or charity but on mutually beneficial investments.
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने कहा कि अफ्रीका का आर्थिक परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि फ्रांस आधारभूत ढांचा, ऊर्जा और नवाचार जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अफ्रीका के साथ सहयोग जारी रखेगा। इमानुएल माक्रों ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीका को स्थायी सीट दिए जाने के समर्थन को भी दोहराया।
4: Qui regarde avec lucidité le passé, qui veut réinventer la relation monétaire et économique, qui veut investir dans le sport, dans les industries culturelles et créatives, dans le co-investissement avec le continent, et qui, avec respect, veut être aux côtés de l'Afrique pour son propre agenda. Et donc la relation entre l'Afrique, elle est fondée en effet sur la lucidité, le courage, le respect et une volonté d'avoir, au fond, un agenda partagé.
0: यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अफ्रीकी देशों को अपने आंतरिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करना होगा, ताकि विकास की गति तेज हो और आर्थिक मजबूती बढ़ सके।
5: अफ्रीका एस एट द लीडरशिप इन सिक्योरिंग द सिविली कमिटमेंट्स टू एक्सपेंड द लेंडिंग पावर ऑफ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, टू मोबिलाइज प्राइवेट कैपिटल एट स्केल एंड टू डिलीवर रिलीफ from the debt burden crushing developing economies. It is African leadership through the African Development Bank that is advancing a bold vision to reform the continental's financial architecture from within, mobilizing African resources for African priorities and

0: prosperity.
1: अफ्रीकन यूनियन कमीशन के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ ने भी उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने क्षेत्रीय एकीकरण और अफ्रीका में विकास के नए अवसरों पर जोर दिया। अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 अफ्रीका और उसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदार देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सम्मेलन के अंत में नैरोबी डिक्लेरेशन अपनाए जाने की उम्मीद है, जो एक अधिक मजबूत, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली अफ्रीका की दिशा तय करेगा।
2: सीबी के 25% उपभोक्ता यानी लगभग 1,28,000 परिवार बिजली दरों में 15% की बढ़ोतरी से प्रभावित नहीं हुए हैं। ये जानकारी मंत्री पत्रिका सेवादेन ने आज दोपहर बाद राष्ट्रीय सभा में दी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार और सीबी मध्य पूर्व में जारी युद्ध के सीधे प्रभावों से सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए सभी प्रयासों में जुटे हुए हैं। उनको सुनते हैं।
3: Si le CEB avait choisi de répercuter l'intégralité de la hausse du coût de fuel load sur les consommateurs, le tarif d'électricité aurait dû augmenter d'environ 25%. Ceci n'a pas été le cas. Malgré la situation financière extrêmement tendue, le gouvernement et le CEB ont veillé à protéger les catégories les plus faibles, les plus vulnérables de la population, ainsi que les petites entreprises. Près de 128 000 familles clients du CEB, incluant les 8 000 bénéficiaires des kits photovoltaïques, ne seront pas affectés par la hausse tarifaire. Ces mesures concernent principalement les ménages enregistrés au Social Register de Mauritius. Au total, Monsieur le Vice-président, 25% de la clientèle du CEB bénéficiera d'un mécanisme de protection contre la hausse des tarifs.
2: भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने आज दोपहर बाद राष्ट्रीय सभा में दिए गए एक बयान में एक्स सीएचए घरों में अस्बेस्टस की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आंकड़ों में असंगति और पुनर्वास के लिए पात्रता संबंधी बाधाओं जैसी समस्याओं के कारण अब तक ठोस कदम उठाना संभव नहीं हो पाया है। शकील मोहम्मद ने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए कई उपायों को आगे बढ़ाने की बात कही। प्लेनलोसा स्थित सेंट्रल सप्लाईज डिवीजन, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के भंडारण केंद्र के रूप में कार्य करता है, को देश के मध्य भाग में स्थित एक नई इमारत में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही कापमालुगु और बिलिया में स्थित दो नई इमारतों का भी इसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा। यह कदम राष्ट्रीय सभा की पब्लिक अकाउंट कमेटी की दवाइयों के भंडारण संबंधी रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद उठाया गया है। इसके अलावा रामिटोरिया के अनुसार इस रिपोर्ट का दुरुपयोग राजनीतिक और जनता को लुभाने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष आद्रियन जुवाल द्वारा किया गया। इसी संदर्भ में रामिटोरिया ने पीएसी के चार अन्य सदस्यों के साथ मिलकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक बयान जारी किया। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: हर साल स्वास्थ्य मंत्रालय 2 बिलियन रुपए से ज्यादा की दवाइयां और मेडिकल सामान खरीदता है। ऐसे में इन दवाओं को सही तरीके से संभालना और सुरक्षित रखना बहुत जरूरी माना जाता है। इस काम में दवाओं की एक्सपायरी डेट पर लगातार नजर रखनी होती है, साथ ही खराब या एक्सपायर्ड दवाओं को अलग सुरक्षित जगह पर रखना भी जरूरी होता है। प्लेनलोसा में स्थित पुराना गोदाम 1965 से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब ये काफी पुराना और जर्जर हो चुका है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं और मेडिकल सामग्री को नए और बेहतर गोदाम में स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहा है। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज की एक्टिंग डायरेक्टर बीबी वाहिदा गोपी बताती हैं, प्लेनलोसा का सेंट्रल सप्लाई डिवीजन और कास्टेल का विभाग एक इकाई तले संगठित होने वाले हैं। हमने कापमालुगु और बेलिया में जगहों की पहचान कर ली है। ये नए मूल ढांचे हैं, वहाँ दवाओं को रखा जाएगा।
4: Là-bas, et ça va être ici, là, il me fait arranger et c'est en bonne condition.
1: 23 अप्रैल को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष अद्रियन जुवाल ने स्वास्थ्य मंत्रालय के दवा गोदामों पर एक विशेष रिपोर्ट पेश की थी। 2021 से 2024 तक की ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित इस दस्तावेज में कई कमियों का जिक्र किया।

किया गया है, जैसे दवाओं को सही स्थिति में न रखना, बिजली की समस्या, एक्सपायर्ड दवाओं की मौजूदगी और सुरक्षा व्यवस्था में कमी। लेकिन 10 मई को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 5 सदस्यों ने एक बयान जारी किया। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है और इससे सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है।

0: अद्रियान जुवाल ने लोगों के जहन में दवाओं की किस्म को लेकर संदेह पैदा किया है। पीएससी के अध्यक्ष होने के नाते ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग है। दवाओं का संचालन और भंडारण एक गंभीर मुद्दा है। किसी भी सरकार को इसका सही प्रबंधन करना चाहिए। इसके लिए सही जगह और सही परिस्थितियां होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक नए दवा भंडारण केंद्र के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मूल्यांकन का काम भी खत्म हो गया है।
1: हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया जाता है। ये दिन आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। नर्सेज स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ होती हैं। वे दिन रात मरीजों की देखभाल कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और नया जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मॉरिशस में स्वास्थ्य केंद्रों में इनकी कमी को देखते हुए विदेशी नर्सों की भर्ती की जा रही है। कुछ निजी क्लिनिकों में इनकी बढ़ती संख्या देखी जा सकती है। और विदेशी खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा शांति प्रस्ताव ठुकराए जाने को मूर्खता कहा। उन्होंने कहा कि अब वे इस कमजोर युद्ध विराम पर और समय व्यर्थ नहीं करेंगे। और अब पेश हैं मौसम संबंधी जानकारियां। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से आने वाले बादलों का असर मौसम पर पड़ेगा। पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे और कभी कभी बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 18 से 20 और साहिली इलाकों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहिली इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:30 बजे सूरज निकलेगा।

0: और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

जॉन कैनेडी स्ट्रीट निविया मिल त्रियोले में 80 साल के 80 ईयर ओल्ड के श्री बुधन गंगा विसुन, जो हंसराज गंगा विसुन से ज़्यादा जाने जाते थे और हिंदी अध्यापक थे, की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे इनकी पत्नी शीला ताकुरी गंगा विसुन के घर निविया मिल त्रियोले से उठाकर टेमिनिस त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 2 PM। नंबर 32 कॉन्डोस लेन काथोबोन में 70 साल के 70 ईयर ओल्ड के श्री वेनी कावलिसा, जो सुनील से ज़्यादा जाने जाते थे और जो पर्यटन मंत्रालय में उच्च अधिकारी थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके भाई अमित कावलिसा के घर नंबर 32 कॉन्डोस लेन काथोबोन से उठाकर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। रॉयल रोड पोस्टफ्लैक में 75 साल के 75 ईयर ओल्ड के श्री नवेंद्र सुनाराम, जो विनोद से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। स्टेलियो टेलेमार्क एवेन्यू कोइटेन स्टेनली में 41 साल के 41 ईयर ओल्ड के श्री कुमार रेशनंद संतोखिया, जो गॉस से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन

के 1:30 बजे उनके भाई केनी संतोकिया के घर स्टेलियो टेलमार्क एवेन्यू क्रेटेन स्टैनले से उठाकर कोडेगार्ड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1:30 पीएम। शिवानंदा एवेन्यू फ्लोरियाल में 90 साल के 90-year-old के श्री भगवत गोकुल, जो अनिरुद्ध से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर शिवानंदा एवेन्यू फ्लोरियाल से उठाकर बिकारा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 एएम। फ्लोरिडा लेन तेरूज में 76 साल के 76-year-old के श्री भरत हिरामन, जो जगदीश से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर फ्लोरिडा लेन तेरूज से उठाकर बामौशों का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमरो एट 11 एएम। पावे रोड पिचराफ्रे में 72 साल के 72-year-old के श्री ज्ञानदत्त भोला, जो ज्ञानदत्त से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1:30 बजे उनकी पत्नी नलिनी भोला के घर पावे रोड पिचराफ्रे से उठाकर मोमास्काल पिचराफ्रे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1:30 पीएम। नंबर 31 रू सेंट फामी सेंट क्वा में 66 साल के 66-year-old के श्री गणेश्वर नेवुल, जो रमेश से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके भाई मनोज नेवुल के घर नंबर 31 रू सेंट फामी सेंट क्वा से उठाकर सिपाही भूले वाले दे प्रेत्र की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 एएम। इंग्लैंड में 73 साल के 73-year-old के श्री सूर्यदेव रिमल, जो सुरेश से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के 12 बजे उनकी पत्नी तारा रिमल के घर सरे इंग्लैंड से उठाकर एमिताज रोड वॉकिंग इंग्लैंड का किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट नून। श्रीमेलागर रोजबेल में 83 साल की 83-year-old की मिसेस ताहिरा सोमाली, जो ताहिरा से ज्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज रात 8:30 बजे उनके बेटे इरफान मुडाबकस के घर शुमेलागा रोजबेल से उठाकर रोजबेल का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 8:30 पीएम। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: शाम के सारे 6 बज चुके हैं. नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है. आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ और एम फ्री. आज मंगलवार 12 मई 2026 और आज का दिन बहुत ही सुंदर है.

और इस दिन को हम समाप्त करने जा रहे हैं और आप लोग साथ दे रहे हैं। मैं हूं उषा कौर, साथ निभा रही हूं। नई सोच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और ये कार्यक्रम हम पेश करेंगे 7 बजे तक, और 7 बजे के बाद भूलिएगा नहीं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम, नई सोच प्रोग्राम खासकर आपके नाम। श्रोताओं, जिंदगी एक ख्वाब की तरह है, कभी इतने खूबसूरत के दिल मुस्कुरा उठता है और कभी इतनी खामोश के आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम सब इस ख्वाब के मुसाफिर हैं जो वक्त के साथ बदलता रहता है।

दुनिया से दूर रह रह कर भी संगीत की दुनिया की एक धनवान आवाज की तुम सादगी हो। मुकेश आम आदमी की आवाज है, संगीत की ईमानदारी है, संगीत की सच्चाई है।

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: नहीं सो 6:32 हुए हैं, 42 मिनट हुए हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं नई सोच कार्यक्रम। जी हाँ, ज़िंदगी का असली मकसद सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के

दिलों में मोहब्बत और उम्मीद जगाना भी है। प्यार बांटना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नफ़रत तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन जो इंसान हर हाल में प्यार बांटता है वही सच में दिलों का अमीर होता है। इसलिए हर मुस्कुराहट के साथ प्यार बांटते चलो, क्योंकि छोटी सी मोहब्बत भी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है।

0: RM3 Radio.
1: Nee so. छः बजकर 53 मिनट हुए हैं। कहते हैं आज की मेहनत ही कल की आवाज़ बनेगी। जो खामोशी आज सह रहे हैं वही कल आपकी पहचान बनेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने साथ दिया इस खूबसूरत कार्यक्रम में। चलिए अगला गाना सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में, और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त हो चला। नई सोच कार्यक्रम के बाद, जी हाँ भूलिएगा नहीं, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: रात के साथ बज चुके हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं आरएम फ्री के साथ रेडियो मनोरंजन, और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए आज मंगलवार 12 मई 2026। जी हाँ, इस खूबसूरत प्रोग्राम पेश है आप लोगों के नाम। चलिए हम साथ देंगे 9 बजे तक, और आप भी साथ दीजिएगा। मैसेजेस आप भेज सकते हैं 1525062200, और कॉल आप कर सकते हैं 1402807। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने रेडियो को ऑन किया है, हमें सुन रहे हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी हाँ, हमेशा की तरह बस ऐसे ही प्यार आप बांटते रहिए। कहते हैं ना, ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसे लम्हे आते हैं दोस्तों जब सब कुछ टूट जाता है, रास्ते ढूंढने लगते हैं और दिल थक जाता है। लेकिन अगर दिल में थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी उम्मीद बाकी हो तो इंसान फिर से खुद को संभाल लेता है। प्यार हमें एक दूसरे का सहारा बना सिखाता है, और उम्मीद हमें यकीन दिलाती है कि हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है। इसलिए कभी अपने दिल से मोहब्बत को ख़त्म मत होने दो। चलिए आज का पहला गाना, जी हाँ, सुनते हैं आशा जी की आवाज़ में, और साथ में है कुमार सानू साहब। 90s और 80s के खूबसूरत गाने आप लोगों के लिए हम पेश कर रहे हैं।

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: की आवाज 7:13 हुए हैं। चलिए दोस्तों अगला गाना, जी हाँ आज की पहली फरमाइश हम चलाने जा रहे हैं ये खूबसूरत गाना, हाँ मैंने भी प्यार किया है लेकिन आपने किससे प्यार किया है, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में, और ये गाना खासकर गिरीश हरलोल के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं। चलिए ये गाना चल पड़ा आपके नाम।

0: दिलों की आवाज।
1: जी हाँ, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम 7:31 हुए हैं और यहाँ पर खास गाना हम चलाने जा रही है सुदेवी जी के लिए, जो हमें सुन रही है मालेंगा से। जी नहीं, वो सुन रही है वाकवा से। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। गाना मांग रही हैं ठियोले के रहने वाली दीदी ललिता के लिए, कुशल फैमिली के लिए आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा और मालेंगा के अनुषा, किरण, याशना, नीरज, राम रतन परिवार के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। चलिए ये गाना आपके नाम।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: चलिए दिलों की आवाज़ प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं और यहाँ पर 90s और 80s के खूबसूरत गाने हम चला रहे हैं और आज ट्यूसडे है जी हाँ 12 मई 2026 आप साथ दे रहे हैं इसके लिए धन्यवाद। अगला गाना फिल्म आरजू से लिया गया जी हाँ और ये गाना खासकर स्वेनल के लिए जो हमें सुन रही है गाना वो मांग रही है भाई श्रावण और भाभी कीर्ति अभिनव की अनव्या और तिलक परिवार के लिए और खासकर हमारे लिए भी थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे बारे में भी सोचते हैं और यहाँ पर मालिनी बालू हैं जो सुन रही हैं और साथ ही साथ में अनिल जी हैं पर बुडियाल है थैंक यू अमीर है जो हमें सुन रहे हैं रजनी मुहाबियर बेंसी नमस्ते आपको शावी आपके नाम भी ये गाना जाएगा निशा भवानी और शाहिन जो है गाना मांग रही हैं अपने हस्बैंड सालिम हुसैन बाकस के नाम और अनिल जी जो है गाना मांग रहे हैं प्यारी पत्नी के लिए दीप्ति गंधौरी है नमस्ते आपको आपको भी हम ये गाना डेडिकेट करते हैं प्रकाश तूफानी जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्रिया लक्ष्मण है आरती राम सहाय है थैंक यू सो मच। चलिए गाना चल पड़ा अलका याग्निक की आवाज़ में और उन सभी लवली ब्राइड और ग्रूम के लिए जी हाँ दुल्हा दुल्हन जो इस अभी तो शादी का सीज़न है तो चलिए जिन लोगों ने शादी के बंधन में बन गए हैं तो आपके नाम ये गाना जाता है।

7:53 हुए हैं और यहाँ पर गाना हम चलाएंगे खासकर सूरज सजादा के लिए जो हमेशा इस प्रोग्राम को सुनते हैं और बेहद ही पसंद करते हैं। थैंक यू जो आपने कहा है ना कि हमारे जो सिलेक्शंस हैं बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है और गाना आप डेडिकेट कर रहे हैं हमारी पूरे MBC टीम मनोरंजन टीम के लिए, थैंक यू सो मच। खासकर RJ हंसिनी, नीतू शाह, पूनम और हमारे लिए भी थैंक यू एंड द होल वर्ल्ड हु इज स्ट्रांगली कनेक्टेड, क्या बात है। और यहाँ पर सागी साथ दे रहे हैं शामिला बुडन, थैंक यू फॉर लिसनिंग जी। और आप है शाहिश, नमस्ते। नितिन सिपोल है जो हमें देख रहे हैं, जैसे कि हमने कहा हम यहाँ पर लाइव ऑन रेडियो हैं लेकिन लाइव ऑन टिकटॉक भी है। अगर आप बिल्कुल आप सुन रहे हैं घर पर, अगर आप देख भी चाहते हैं तो जी हाँ, हमारे जो पेज है RM Free Radio आप उसको फॉलो करो। और यहाँ पर खास गाना हम चलाएंगे शारदा लखनोट के लिए। ऋषि बुडू है और निवेद, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अरुषिका जी हाँ, उनके लिए भी हम गाना चलाएंगे। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। और दीप्ति गंधावरी है जो गाना मांग रही हैं अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: जी हाँ, आज बज चुके हैं और यहाँ पर खास गाना हम चलाएंगे मयूर के लिए। जी हाँ, फिल्म का नाम है रन, दिल में जो बात। चलिए, दिल में जो बात है हम कभी कभी कह नहीं सकते हैं, और ये बात जो है दिल में ही रह जाता है। और यहाँ पर खास गाना मयूर, जी हाँ मयूर जो हमें सुन रहे हैं, आजा गैन के नाम गाना जाएगा। रोबी गमे सौ है जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम सूरीनाम, दिनेश गोपी हैं, यश फ्रॉम लिवरपूल इंग्लैंड, जैसे कि हमने कहा अब दूर है लेकिन दिल के बहुत ही करीब है, केशनी, यासिन, हर्षा, राधा सामी, थैंक यू फॉर लिसनिंग, मोनी जो है और विशाल जी हैं, उनके लिए भी हम गाना चला रहे हैं। और हमारी प्यारी सुमिता भी जो हमें सुन रही है, और जय सुमिता, थैंक यू फॉर लिसनिंग, आपके लिए भी ये गाना चल पड़ा।

0: RM3 Radio. दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चल, लेकिन चले कहाँ, अभी तो जाने का समय नहीं आया है और समय बाकी है। 8:07 हुए हैं और यहाँ पर गाना हम चलाएंगे हिमेश के लिए, और साथ ही साथ में ये गाना क्रिमिनल फिल्म से लिया गया, जी हाँ, कुमार सानू की आवाज़ में, और ये गाना तरुण के नाम, जो हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तरुण राम आपके नाम जाएगा ये गाना, और यासिन खासकर मिमी के नाम, विशाल पास्काल जो है, थैंक यू पास्काल, आपके नाम भी हम गाना चला रहे हैं, और यहाँ पर माधुरी जी, नास है रानी जो हमें सुन रही हैं पोटरी से, तुम मिले दिल खिले और क्या चाहिए, और गाना खासकर सिला

अल्लाह के लिए भी जाएगा जो रहती है ख्वाबु चिक गाना उनके लिए और उनके बच्चों के लिए और अनीता जी जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम क्यूपिप उनके लिए भी गाना जाएगा और एक अनीता है जहां जो हमेशा हमारा प्रोग्राम सुनती है वो रहती है फिकाउ फ्लाक

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज,
1: दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। जी हाँ, तुम मेरे दिल के लिए, जैसे कि हमने कहा, रोमांटिक मौसम और रोमांटिक गाने और यहाँ पर आदाब। जी हाँ, आप हैं, नाम तो नहीं बताया आपने। हाँ जी, रेहाना जी जो हमें सुन रही है फ्रॉम फिनिक्स। और अगला गाना अजय वीना के लिए, अखियों के झरोकों से फिल्म से लिया गया ये गाना, जाएगा आपके नाम। और विशाल के लिए और उनके दोस्त के लिए भी, सभी दोस्तों के लिए जो SSU में काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये गाना हम चलाएंगे। और कुनल जो है उनकी पत्नी वाफिया के नाम, शिरेन रमजान और अनीता जी, जी हाँ, मामा अनीता के लिए गाना जाएगा, आरती राम सहाय और मनीष गुरजन के लिए भी ये गाना चल पड़ा। थैंक यू सो मच। तरन दौलत जो है हमें सुन रहे हैं, माधुरी दीक्षित का गाना हम चलाएंगे। यस,

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: आठ बजकर 19 मिनट हुए हैं जी हाँ, और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा गाना है, फिल्म अनवर से लिया गया और रूप कुमार राठौर साहब की आवाज़ में ये गाना जाएगा तुषार के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं, और दाहिना सान के लिए भी। नमस्ते आपको, कैसे हैं आप? और साथ ही साथ में नाज़िगा रहमान, जी हाँ आपके नाम भी हम गाना चला रहे हैं, और साथ में आप लोग सुन रहे हैं RM Free Radio, रेडियो मनोरंजन। कावी कावी सैन दिम शाय है, दीनू जी आपके लिए भी गाना हम चलाएंगे, वीना रंगलाल प्रिंस लव कुश, नमस्कार आपको। विक्षय और बिस्वानी जुबन जी के लिए भी, मौला मेरे मौला, और साथ में ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जो इस समय काम से वापस घर जा रहे हैं। दिन आसान नहीं था हमें पता है, लेकिन आज का दिन एक लेसन के लिए, एक लेसन की तरह हम याद करेंगे और कल के लिए एक नया दिन शुरू करेंगे।

जी हाँ दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता हम उसी मंजिल तक पहुँचेंगे जिसे हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर ख़ास गाना अजमेर के लिए जो हमें सुन रहे हैं अनसुया, जो विदेश से हमें सुन रहे हैं। हेलो मॉरिशस, गाना वो मांग रही हैं प्रीतम अनसुया शिवलाल के लिए। शोभा जी, जी हाँ शोभा जी गाना मांग रहे हैं अपने लिए। आशा जी जो है गाना मांग रही हैं अपने हस्बैंड सत्यम के लिए। जी हाँ जानू, आपके लिए भी गाना जाएगा। अब्दुल रिशाद, आपके नाम भी। और जाद जो है, थैंक यू जाद फॉर लिसनिंग, आपके लिए भी ये गाना चल पड़ा।

और हमारी प्यारी आरजे गिनिशा जो है जो इस समय हमें सुन रही है और घर पर रेस्ट कर रही है, आपके लिए भी गाना चल पड़ा गिनिशा, सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की आवाज में। और साथ

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: जी हाँ, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम, रोमांटिक प्रोग्राम, 80s और 90s के रोमांटिक गाने और आप लोगों का साथ जो है, और आपके फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस के लिए भी हम आपको कहेंगे बहुत धन्यवाद। प्यार जो है कभी कभी समझ में नहीं आता हमको, प्यार हुआ है कि नहीं, बस कंफ्यूजन ही रह जाता है। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत गाना, भाग मिलका भाग, फिल्म से लिया गया और अंग्रेज। और ये गाना खासकर नोविन के लिए जो हमें सुन रहे हैं, जैसे कि हमने आप लोगों से कहा है कि कुछ लोग हमें देख भी रहे हैं लाइव फ्रॉम टिकटॉक, क्योंकि ये प्रोग्राम कुछ ऐसा ही है। और खास गाना हम चलाएंगे राज सिंह डुकिया के लिए, डेवी के लिए भी गाना जाएगा, डेवी होम डेको वही दही। जी हाँ, गाना आपके नाम सुनील बेरवाल, आपके नाम भी रिधि, और

पहले गाना चल पड़ा श्रेया घोषाल और जावेद बाशर की आवाज़ों में। और जी हाँ, हम कैसे भूल सकते हैं हमारे जो भाई हैं रफीक मोहित, जो हमेशा इस प्रोग्राम को सुनते हैं।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: खुशकिस्मत है वो लोग जिन्होंने प्यार को पाया है, और कहते हैं ना जिनका कोई नहीं है उन लोगों के लिए भगवान होता है। और यहाँ पर फाजाना सुभाषी के लिए गाना हम चलाएंगे, तुम इन फिल्म से लिया गया एक गाना इसमें हम चलाएंगे आपके नाम फाजाना जी। और साथ ही साथ में अजमेर के लिए जो गाना मांग रही है फरहीन के नाम, और डानी जगरू जी जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम गुडलैंड्स, उनके लिए भी गाना चल पड़ा। और साथ ही साथ में साधना के नाम, बीवी सुमैया के लिए, आपके लिए भी गाना हम चलाएंगे। और साथ ही साथ में वसंती गोकुल जी हैं, विमला लक्ष्मण, कृष्णा करका, आपके नाम। देखते ही देखते क्या हो गया, क्या से क्या हो गया।

0: दिलों की आवाज,
1: जहाँ कुछ ही देर में ये कार्यक्रम समाप्त होने वाला है और आप लोग जिन्होंने साथ दिया है आपको तहे दिल से हम कहेंगे बहुत ही धन्यवाद। ये वादा रहा फिल्म से लिया गया टाइटल सॉन्ग खासकर। हिना देवंश के लिए अभिषेक है, इश्मिता श्वेता सीता के लिए शामिला चुनीलाल आपके नाम भी।

ये गाना जाएगा रंभा जी। जी हाँ, रंभा जी के लिए ये अगला गाना खासकर उनके लिए और साधना के लिए भी। और साथ ही साथ में गाना हम चलाएंगे चांदनी जी के लिए जो इस समय हमें सुन रही हैं।

8:55 जी हाँ ये वादा रहा आपसे कि हम वापस आएंगे बहुत ही जल्द। अभी के लिए ये कार्यक्रम समाप्त होता है, वादा हम करते हैं कि बहुत ही जल्द हम मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, उषा की ओर से नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: नमस्ते उनके सब श्रोता लोग के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तह स्वागत करते हैं। जब भोजपुरी तड़का तो हर कार्यक्रम है और ये अभी 9:04 होल बा अभी से 11 बजे लेकर हमने के साथ रही हमने संगे संगे रह जा और ये भोजपुरी तड़का कार्यक्रम तो हर नाम करब जा और ये अभी हमने भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जो चलता हमेशा करीते आज भी तोह लोग 5251705 पर हमने के मैसेज भेजा जा या फिर 402-8985 पर 4028085 पर हमने के टेलीफोन सक बचा करे और ये बोलिया जा हमने के कौन गाना सुनने खोजा था वजह तो हर पसंद के गाना हमने के भोजपुरी तड़का में शामिल कर अब जा और ये तड़का के स्वाद बढ़ावा अब जा। चला अभी पहला गाना तो लगे पपूरी गाना सुनवाओ अब जा भोजपुरी बॉयज के कलाकार लोग के गावल और ये गाना में कई गो गाना के संगम बा। चला सुनी जाओ और एक एंजॉय करी जा।

गायला जा तो हर फरमाइश संगे और अभी हमने प्रस्तुत करब जा बहल गौरी जी के गावल और सुक्रीम गौरी जी के संगे संगे गावल गाना करम जरूरे धमा दुआ चला ही गाना हमने सुनी जा और गाना हमने विशाल जी के पसीन पर तोहरा सुनवावत है जा विशाल जी रहे लन फ्लाक और वहाँ से गाना मंगले वन मोचिदा के मीरा जी के नाम तो चला सुनी जा हमने गाना में कौन सी बा आगे के जिन शब्द रहत हल इमें खूब उम्दा तरह से प्रस्तुत करल बा

0: भोजपुरी तड़का।
1: तो भोजपुरी तड़का में सुना था जहाँ हमनी दामाद के कितना तरह से सिफारिश कर जला चला तो दामाद जी के तक यही प्रकार से स्वागत हो हमनी के जो समाज वायकर में हमके परिवार में। चलो अभी 9:15 होल बा और बढ़ते चलब जा कलकत्ता से निकलल जो जहाज उदहाज के मॉरिशस में हमने देखा जा। सरिता बुद्ध जी के एल्बम के ये गाना है और ये गाना हमने से मंगले हवन साची जी रोजहिल से चला उनका बगल से उनका संगतियालो के नाम करी जा ये गाना और ये सुनी जा। ई दहाज में कितना दर्द कितना पीड़ा कौन तरह से हमने के पूर्वज लोग सहते सहते आ रहा जा।

चला अब आगे बढ़ी जा बढ़ते चली जा और प्रस्तुत करी जा सुनीता ननकू जी के गावल गाना। इस गाना हमने अमृता जी खातिर बजावत है जा पीतों के अमृता जी गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर अपन नातिन सोनिया और परी खातिर और बेटा विशान और बहू मीनाक्षी तथा पूनम खातिर।

कृष्ण ओखर जी के गावल गाना सुने थे जब भी हमने और ये गाना हमने सुनवाए थे जा आत्माराम जी के पसंद पर आत्माराम जी गाना मंगले हवन सुदेवी जी खातिर बहिन सुदेवी जी खातिर बहिन ललिता बहिन प्रभावती और बहिन छोटी जी खातिर और यही गाना इसनु परिवार खातिर मंगले हवन आत्माराम जी बेले अके

मामा और पापा और अगवा के लेके बहल गौरी और सुग्रीव गौरी जी के गावली गाना हमने बजवावत हैं जा अब्बू जी खातिर वाकवा से अब्बू जी गाना मंगले हवन आफिस असलम आयाज जायान जाहिरा रईस कालाचोती और अपन दोस्त अपी और उनकर पत्नी खातिर

अभी कुछ सुने जा हमने बड़का मामा गाना हमने सुना अब जस्ट सुदेश बोजू जी के गावल और ये गाना सब कोई पसंद करेला और संगे संगे मीरा बाई जी पसंद करेलन मोदाल बे ऐसे मीरा बाई जी गाना मंगले हवन अपन बेटी दामाद खातिर अपन पति खातिर और पाद्या परिवार तथा धमिया परिवार खातिर

और गिरीश रूपचंद जी के गावल ये रोमांटिक नाना नानी के बारे में चला सुनी जा हमने तेहोश के शांति जी के पसंद पर दागुचे के उनकर पूरा मराठी परिवार खातिर अप्पा दागुचे के उनकर बगीना ओम खातिर।

हमी के गाना आगे बढ़ाओ अब जा अभी हमी के श्रोता से बात करत रली और ऐसा में हमी के श्रोता के फरमाइश जल्दी जल्दी ले ले रही उनका फरमाइश तो पूरी करबे करब जा अभी चला सनी जा अभी पूर्णिमा पकी राज के गावा ले को गाना और ये है गोल ललना पूर्णिमा जी गाना मंगले हवन अपन दामाद रोशन दसोई जी के जन्मदिन के अवसर पर अभी काम करके आवत हवन और ये अपन गुडलैंड के बेटी पिंकी कालियाचेती जी के जन्मदिन के अवसर पर तो इन लग के जन्मदिन बहुत मंगलमय रही पूर्णिमा जी ई प्रार्थना करत हवन ई आशीर्वाद देवत हवन और ये आशीर्वाद देवत हवन कि हमेशा सुखी रहियन खूब तरक्की करियन उनका लड़का लोग पूरा फकीरा परिवार बगल से दसोई परिवार बगल से और कालियाचेती परिवार बगल से पिंकी जी और रोशन जी के जन्मदिन के मंगल कामना हमने के पूरा टीम बगल से चला सुनिजा पूर्णिमा फकीरा जी के गावल ई ललना रोशन जी और पिंकी जी के नाम करी जा

और भोजपुरी के कार्यक्रम तो हर नाम कर रहे थे जहाँ भी 9:46 और ये आगे मैडम तो हमने 11 लेके अभी जो गाना लेके आल है जा यहाँ विनोद शिवदत्त जी के गावल गीत भोजपुरी भाषा और भोजपुरी भाषा वाला गाना हमने ललिता जी के पसंद पर बजवा थे जा उनकर बहन सुदेवी बहन ज्ञानी बहन देवीना खातिर छोटी जी खातिर प्रभावती जी हरीश जी और आत्मा राम जी खातिर सुखलाल मौसी खातिर और माला राम जवान जी खातिर

और ये गाना उत्तरदत्त पोकंजी के गावल गाना। ये गाना हमने से मंगले हवन तायाक से हमने के श्रोता रफीक मोहित जी और ये गाना मंगले हवन पर दोस्त शास्त्री बनुमाली जी खातिर मौत आबा के

कॉस्मोस के गायत्री जी के पसीन के गाना चलाई ला जा गायत्री जी गाना मंगले हवन अपन बेटा अजय खातिर अपन मामी कल्याणी मोहन जी खातिर मेबर्ग के अपन सखी गीता बाई जी खातिर नुवेल फॉन्स के और लॉन्ग माउंटेन के अपन भाभी शकुंतला जी खातिर

और चला अभी कुछ हमने सुना नयन जी के गावाली को गीत सुनी जा और इस सुना नयन जी के गावाली गाना हमने सुना थे जा सुनते रहो एल्बम से लेवल गली गाना हमने से राजन लक्ष्मण जी मंगले हवन और ये लाफ्लोगा से राजन लक्ष्मण जी गाना मंगले हवन अपन पत्नी माला जी खातिर बेटी प्रगति और प्रार्थना खातिर बहिन मानती खातिर अपन भगिनी उर्मिला तुलसी खातिर और ये वाशरी के पूरा लक्ष्मण परिवार खातिर

रंभाराम तोहर जी के गावल रेशम के साड़ी गाना हमने बजावत है जा सुदेवी जी के पसंद पर उनकर बहिन ललिता जी खातिर कुशल परिवार खातिर आत्माराम भैया खातिर दीदी सुनीता शोभा देवी ना मालेगा के राम रतन परिवार खातिर और ये गाना सुदेवी जी हमने के सब सब श्रोता लोग के नाम करत हवन

और अब चला तनी चटनिया दाली ला जा हमने के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में और कर चटकार बढ़ाए ला जा ये गाना हमने से मीरा मोहन जी के गावल मंगले हवन फ्री कॉम्प्लेक्स से अनीता जी मंगले हवन ये गाना अपन पूरा परिवार खातिर अपन सब संगतिया लोग खातिर और हमने के सब सुने हो लालो खातिर बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी चलत फ्लिक ऑन फ्लैक लिखते नहीं सन चटनी पहुंचा दे इलाजा मीरा मोहन जी की आवाज़ में

मच्छी मरवा गाना चला सुनीजा हमने जय हरलाल जी के गावल और मच्छी मरवा के जीवन के बारे में तनसन सुनीजा ये गाना कल्याणी जी मंगले हवन हमने से मेबग के कल्याणी जी अपन भगिनी गायत्री जी के नाम करत हवनी गाना उनकर बेटा अजय जी के नाम विलनुआ के भाभी सुनीता देवी दिन जी के नाम अपन बहन बिंदु कालीचरण जी के नाम और ये अपन दोस्त के नाम

चले तेरी सर विदाई के गीत सुनी जा हमने और चंद्रदेव जी बुधन जी के आवाज में ये गाना सुन के हमने उमा जी के पसीना तरह सुनवाला जा फौजी साग से उमा जी चंद्रदेव जी बुधन जी के गावली गाना मंगले हवन

और अब सुना थे जी हमने बसंत सुपौल जी के गावल गाना यह दूल्हा राजा होला गाना चला दूल्हा राजा के बरियात में शामिल हो जाए लाजा हमने और ये गाना हमने बजाओ थे जब विवेक जी के पसीन पर विवेक जी गाना मंगले हवन अक्षय के शादी के अवसर पर उनकर शादी इस हफ्ते हुआ था ये सप्ताहांत में हुआ था तो चला ये गाना हमने विवेक जी बगल से करे थे जा अक्षय जी के नाम

बढ़े के बोलते हवा जाता बढ़ी जा हमनी सोना नयन जी की आवाज के गाना बगल और ये गाना हमनी से मंगले हवन बिहारी हरि प्रेम जी त्रियोले से चला सुनी जा कौन फुलवा फूले ला तो रगन

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो कुआं में डुबकी लगा।

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या हो,

संतोष महादेव जी के गावले को गाना चला सुनी जाओ। और ये गाना हमने पालमा के महेन जी के नाम करे थे, जो उन्हें करी फरमाइश है, महेन जी की फरमाइश।

न धोखा देके जाब न लाफ्रांस जाब अभी हम तो हर से विदा लेके जाब और अपन घरे जाब मोरीसवे में जाब बस विदा लेब अब हम ई कार्यक्रम से हमनी के भोजपुरी तड़का में इतना भाग लेला जाए कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद अभी कुणाल बाबूलाल के गावल ई गाना हमनी सुनत है जा और भोजपुरी बॉयज के ग्रुप के ई गाना है ई गाना के संगे संगे हमनी के कार्यक्रम भोजपुरी तड़का समाप्त हुआ था 11 बजे सुनिया जा आज के सुनहरे पल कार्यक्रम पुराना गीत के कार्यक्रम प्रस्तुत करी नीतू शाह तो आवत हला फिर मिलब जा शुभ रात्रि नमस्ते

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं, आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। एक बार फिर आपकी नीतू आपके समक्ष रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, और ये है सुनहरे पल कार्यक्रम। आइए आज आपको ले चली है यादों की दुनिया में एक ऐसे कलाकार से मिलवाते हैं, भले ही ना रहे लेकिन उनकी यादें तो हमेशा जीवित रहेंगी। आप थे सुनील दत्त।

हिंदी सिनेमा के उन महान कलाकारों में से थे जिन्होंने सिर्फ अपनी एक्टिंग से ही नहीं बल्कि अपनी इंसानियत, सिंप्लिसिटी और बड़े दिल से भी लोगों के दिल जीते। उनका असली नाम बलराज दत्त था, लेकिन दुनिया उन्हें प्यार से सुनील दत्त के नाम से जानती है। बॉलीवुड में उनकी

पहचान एक ऐसे एक्टर की थी जो हर किरदार में जान डाल देते थे, चाहे इमोशनल रोल हो, एक्शन हो, रोमांस हो या सीरियस सोशल मैसेज देने वाली फिल्म।

सुनील दत्त का जन्म पंजाब के झिलम डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। पार्टीशन के वक्त उन्होंने और उनके परिवार ने बहुत मुश्किलें देखी। देश के बंटवारे का दर्द उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा रहा, लेकिन इतनी परेशानियों के बाद भी

0: लागू।
1: करियर के शुरुआती दिनों में सुनील दत्त रेडियो अनाउंसर के रूप में काम करते थे। रेडियो सेलन पर उनकी आवाज और उनका अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता था। इसी दौरान उनकी मुलाकात बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों से हुई और धीरे धीरे उनका रुझान एक्टिंग की तरफ बढ़ने लगा।

लंबा कद गहरी आवाज और आंखों में एक अलग ही सिंसियरिटी नजर आती थी।

बॉलीवुड में असली पहचान फिल्म मदर इंडिया से मिली। इस फिल्म में उन्होंने नरगिस के बेटे का रोल निभाया था। फिल्म में उनकी एक्टिंग इतनी पावरफुल थी कि लोग उनके टैलेंट के फैन बन गए। इसी फिल्म के दौरान एक इंसिडेंट हुआ जहां शूटिंग के वक्त आग लग गई थी और सुनील दत्त ने बहादुरी दिखाते हुए नरगिस की जान भी बचाई। कहते हैं इसी इंसिडेंट के बाद दोनों के बीच प्यार हुआ और बाद में उन्होंने शादी कर ली। नरगिस और सुनील दत्त की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे रिस्पेक्टेड और प्यारी जोड़ियों में मानी जाती है।

वैसे सुनील दत्त की एक्टिंग स्टाइल बहुत नेचुरल और इमोशनल होती थी। वो ओवर एक्टिंग में यकीन नहीं रखते थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस और आवाज की गहराई ही इमोशंस को इतनी खूबसूरती से बयां कर देती थी कि ऑडियंस खुद को उनके कैरेक्टर्स से कनेक्ट महसूस करती थी। वो स्क्रीन पर एक डिग्निफाइड और सिंसियर पर्सनालिटी लेकर आते थे। इसी वजह से उनके इमोशनल सीन्स लोगों के दिल छू जाते थे। सुनील दत्त ने अपने करियर में कई यादगार फिल्में दी, जैसे साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, वक्त, पड़ोसन, रेशमा और शेरा वगैरह वगैरह। फिल्म पड़ोसन में उनका सिंपल और इनोसेंट कैरेक्टर आज भी लोगों को हंसाता है। वहीं मुझे जीने दो और रेशमा और शेरा जैसे सीरियस सिनेमा में उन्होंने अपनी एक्टिंग की गहराई दिखाई। उनकी वर्सटैलिटी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी।

दरअसल में उनका कॉमेडी टाइमिंग कमाल का था। किशोर कुमार और महमूद जैसे लेजेंड्स के बीच भी सुनील दत्त ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका सीधा साधा भोला कैरेक्टर ऑडियंस को बहुत ही पसंद आया और फिल्म हिंदी सिनेमा की एवरग्रीन कॉमेडीज में शामिल हो गई। सुनील दत्त वैसे एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने मीनिंगफुल सिनेमा को सपोर्ट किया और ऐसी फिल्में बनाई जो समाज को एक मैसेज देती थी। उनकी फिल्म यादें एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म मानी जाती है जिसमें पूरी फिल्म लगभग सिर्फ उनके कैरेक्टर के आसपास घूमती है। ये उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस को दिखाता है।

0: जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

उनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव आए. जब नरगिस कैंसर से लड़ रही थी तब सुनील दत्त एक डिवोटेड हस्बैंड की तरह हमेशा उनके साथ खड़े रहे. नरगिस जी के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपने बच्चों और परिवार को संभाला. उनका अपने बेटे संजय दत्त के साथ रिश्ता भी बहुत गहरा था. मुश्किल वक्त में भी उन्होंने अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ा. सुनील दत्त पॉलिटिक्स में भी आए और देश सेवा को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा भी बना लिया. वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने और उनकी इमेज एक ऑनेस्ट और सॉफ्ट स्पोकन नेता की थी. वो हमेशा शांति, इंसानियत और यूनिटी की बात करते थे. उन्होंने कम्युनल हार्मनी और पीस के लिए भी कई पदयात्रा भी की.

पर्सनालिटी में एक अजीब सा सुकून और गरिमा थी। वो बड़े सौर होने के बाद भी बहुत ही हम्बल और कहते हैं ना डाउन टू अर्थ थे। इंडस्ट्री में हर कोई उनकी इज्जत करता क्योंकि उन्होंने कभी अपनी सिंप्लिसिटी नहीं छोड़ी। सुनील दत्त एक ऐसे इंसान थे जो फेम के साथ साथ इंसानियत को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देते थे। आज भी जब हिंदी सिनेमा के ग्रेटेस्ट एक्टर्स की बात होती है, सुनील दत्त का नाम बड़े अदब बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी फिल्में, उनकी आवाज़, उनकी सिंप्लिसिटी और उनका बड़ा दिल आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वो सिर्फ एक सुपरस्टार ही नहीं थे, वो एक बेहतरीन इंसान, एक केयरिंग हस्बैंड, एक लविंग पिता और एक ट्रू जेंटलमैन थे। उनका जीवन ये सिखाता है कि असली ग्रेटनेस सिर्फ सक्सेस में नहीं बल्कि इंसानियत और अच्छाई में भी होती है। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ लेले
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के